सहारा तेरा है तो हर हालात से गुजर जाऊंगी, हम सफर अगर तुम हो तो हर हालात में निखर जाऊंगी।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना। जिंदगी ईश्वर का उपन्यास है, ईश्वर को उसे लिखने दीजिए, हमें बस अपना कर्म सही तरीके से करते रहना है।

संसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दो विपरीत ध्रुवों की तरह हैं। बिना एक को छोड़े दूसरा हासिल नहीं हो सकता।

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित वरीले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। 8 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हिमाचल डायरी का आज का अंक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 10 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। महफिले कवाली का समय रहेगा सुबह 10:15 पर। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10:45 पर। दिन के 11 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। दोपहर 12 आप सुनेंगे वनिता मंडल कार्यक्रम और 12:30 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 1 विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। दोपहर 2 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 3 प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 3:10 का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5 हिंदी समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम, युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युव मंच शाम 5:30 पर। शाम 6 प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सफर सुहाने गाने नए पुराने। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां। 8 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 न्यूज एट 9 आप सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। देर रात 11 हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये दी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। आप सुनेंगे संस्कृत समाचार 7 बजे, हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हिमाचल की।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 7:06 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो श्रोताओं, करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज के इस विचार के साथ, क्योंकि एक विचार हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो आज का विचार है, जिंदगी है बहने दीजिए, नए संकल्प ले, खुद ही खुद को प्रेरित करें, उदासीनता से निकलें, नई चीजें सीखें जो जीवन में बेहतर बदलाव लेकर आए, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। क्योंकि श्रोताओं, एक विजेता सिर्फ एक हारा हुआ इंसान है जिसने एक और बार कोशिश की। क्योंकि कहते हैं ना, जीतने के लिए जिद चाहिए, हार के लिए तो डर ही काफी है। तो बिना डरे चले अपनी अपनी मंजिलों की ओर और अपने सपनों को हकीकत बना दे। तो अब हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी श्रोताओं के रेडियो सेट्स पर भेजते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपके साथ साझा करते हैं आज के दिन इतिहास में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी। तो बात करें 8 मई सन 1912 की, तो सन 1912 में पैरामाउंट पिक्चर्स की स्थापना हुई थी और आज ही के दिन सन 1945 में जर्मनी ने मित्र देशों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, जिससे यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और आज ही के दिन सन 1977 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स ने अपना अंतिम स्टूडियो एल्बम लेट इट बी जारी किया था। बात करें 8 मई सन 2004 की, तो आज के दिन श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। और आज के दिन सन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को आधुनिकतम पारंपरिक शस्त्र प्रणाली देने पर सहमति हुई थी। और श्रोताओं, आज ही के दिन हम मना रहे हैं कुछ विशेष दिन जिनके बारे में आगे हम कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, आप कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको जानकारी देते हैं आज के विशेष दिनों के बारे में, जिन्हें की आज के दिन हम मना रहे हैं। श्रोताओं, आज है 8 मई और आज हम मना रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, और इसी के साथ हम मना रहे हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो इन दिनों के ऊपर हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को याद करने और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 8 मई सन 1828 को हुआ था। ये दिन जो है युद्ध, महामारी और आपदाओं से प्रभावित लोगों को समर्पित दिन है, उनकी सेवा के लिए समर्पित दिन है। निस्वार्थ भाव से मानव सेवा और लोगों का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इस दिन का उद्देश्य है। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की थी और उन्हें सन 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी इसके लिए मिला था। ये एक विशेष दिन है जो वैश्विक स्तर पर मानवीय प्रयासों और रेड क्रॉस आंदोलनों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार का विषय है मानवता में एकता, जो संकट के समय समुदायों के साथ खड़े स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के समर्पण का सम्मान करता है, और यह विषय मानवीय भावना को बढ़ावा देता है। इसके मूलभूत सिद्धांत हैं मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। तो श्रोतों, ये दी जानकारी रेड क्रॉस डे के बारे में, जिसे हम आज मना रहे हैं। अब बात करते हैं विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में, जिसे कि हर साल 8 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है अब और छिपा नहीं, अज्ञात लोगों को ढूंढना, अनदेखे लोगों का समर्थन करना। यह दिन अनुवांशिक रक्त विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरीजों के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करना है जो जांच की कमी के कारण से अभी भी अनजान हैं। थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर देखभाल और पहचान दिलाने का प्रयास करता है। इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान या समय पर जांच से एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। हर साल 8 मई को थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जो जॉर्ज एंग्लिसोस की याद में मनाया जाता है, जो कि इस बीमारी से पीड़ित थे। इस दिन को मनाने का उद्देश्य थैलेसीमिया के रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने और समाज में इस बीमारी के प्रति समझ बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। श्रोताओं, बेहतर स्वास्थ्य नीतियों की लोगों को अवगत करवाना, रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना, जो मरीजों के लिए जीवन रक्षक है। थैलेसीमिया के लक्षणों की बात करें तो इसमें अत्यधिक थकान और कमजोरी, त्वचा, होंठों और पलकों का पीलापन, धीमी वृद्धि या विकास में कमी है। 8 मई को दुनिया भर के लोग और संगठन थैलेसीमिया से प्रभावित लोगों की आवाज को बुलंद करके उनके लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, ताकि सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़े। यह दिन उन लोगों पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। यह दिन जोखिमों, समुदायों के भीतर रोगियों के हाशिए पर चले जाने पर प्रकाश डालता है। ये एक गंभीर अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से फैलता है। इस बीमारी में शरीर में हीमोग्लोबिन का पर्याप्त या सही उत्पादन नहीं हो पाता, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। इनके लिए निदान भी है, लाल रक्त कोशिकाओं के आकार और हीमोग्लोबिन स्तर की जांच, असामान्य हीमोग्लोबिन का पता लगाना, जेनेटिक टेस्ट करना। थैलेसीमिया मेजर का कोई स्थायी इलाज आमतौर पर नहीं है, लेकिन सही तरीके से इसका इलाज करके इसका प्रबंधन जो है वो किया जा सकता है। नियमित रक्त आधान करके खून की कमी को पूरा किया जाता है। आयरन क्लीशन थेरेपी से बार बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे बाहर निकालने के लिए इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। फॉलिक एसिड की खुराक लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती है और बचाव के लिए कई स्तर पर इस पे कार्य किए जाते हैं। तो लोगों को इस दिन में जागरूक किया जाता है, अगर कुछ इस तरह के लक्षण लग रहे हैं या समय समय पर अपनी जांच और गर्भावस्था समय में अपनी जांच करवाना कितना ज़रूरी है। तो ये थी आज के इन दो विशेष दिनों के ऊपर जानकारी, विश्व रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में एक और गीत।

0: में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बात करते हैं विज्ञान से जुड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, कि कैसे प्लास्टिक के नन्हे कण जो हैं वो धरती को और गर्म बना रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स वायुमंडल में गर्मी सोखकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। रंगीन और काले प्लास्टिक के कण सफेद कणों की तुलना में 75 गुना अधिक गर्मी सोखते हैं, जो कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज के लिए एक गंभीर खतरा हो सकती है। हाल ही में हुए एक नए रिसर्च ने पूरी दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। अब तक हम जानते थे कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे समुद्रों, नदियों और मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं, हमारे वायुमंडल को गर्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में छपा एक रिसर्च यह बताता है कि हवा में तैरते ये नन्हे कण सूरज की रोशनी को सोख रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। खासतौर से रंगीन माइक्रोप्लास्टिक्स सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के वे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये अक्सर बड़े प्लास्टिक कचरे के टूटने या घिसने से बनते हैं। हमारे कपड़ों, कॉस्मेटिक्स और टायरों के घिसने से निकलने वाले ये कण आज हवा में हर जगह मौजूद हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शिंडेल के अनुसार वायुमंडल में मौजूद ये कण दो तरह से काम करते हैं। या तो ये सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे ठंडक होती है, या फिर ये गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। ये साफ है कि कुल मिलाकर माइक्रोप्लास्टिक्स गर्मी को सोखने का काम जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये वार्मिंग

एजेंट यानी धरती को गर्म करने के कारण जो हैं बन चुके हैं। चीन की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में पाया कि प्लास्टिक का रंग या तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है कि वह कितनी गर्मी पैदा करेगा। काले, पीले, नीले और लाल रंग के माइक्रोप्लास्टिक्स सफेद या पारदर्शी कणों की तुलना में सूरज की रोशनी को बहुत तेजी से सोखते हैं। स्टडी में ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रंगीन और काले प्लास्टिक के कण बिना रंग वाले प्लास्टिक की तुलना 75 गुना ज्यादा जो गर्मी है वो सोखते हैं। जैसे जैसे ये कण पुराने होते हैं, वायुमंडल में मौजूद अन्य रसायनों के संपर्क में आते हैं और उनकी गर्मी सोखने की क्षमता बदल जाती है, जो जलवायु के लिए एक अनजाना खतरा है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रभाव की तुलना ब्लैक कार्बन से की है, जो जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती है। वायुमंडल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स ब्लैक कार्बन द्वारा होने वाली गर्मी का लगभग छठा हिस्सा जो है वो पैदा कर रहे हैं। प्रोफेसर शिंडेल का कहना है कि एक साल में निकलने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स का वैश्विक प्रभाव लगभग 200 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के बराबर है। हालांकि यह कारों या बड़ी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कम लग सकता है, लेकिन यह इतना भी कम नहीं है जिसे कि नज़रअंदाज किया जा सके। सबसे बड़ी चिंता ये है कि प्लास्टिक दशकों तक नष्ट नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसके दीर्घकालिक परिणाम जो हैं वो गंभीर हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स को मापने की तकनीक का भी शुरुआती दौर है, इसलिए अभी इसके स्टीक प्रभाव को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ये भी कहते हैं कि इकोसिस्टम और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भविष्य में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है बन सकता है। इसके ऊपर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में अब अधिक काम करेंगे, ताकि यह समझ सकें कि ये अदृश्य कण हमारी धरती के भविष्य को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल संदेश साफ है कि प्लास्टिक सिर्फ जमीन और पानी की समस्या नहीं, बल्कि हमारे आसमान और जलवायु के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो बन चुका है। तो ये थी इस आज की इस विज्ञान चर्चा में आपके लिए जानकारी, जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में थी, कि छोटे छोटे कण हमारे पर्यावरण को और मौसम को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अब श्रोताओं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। यह भारत के अब तक के सबसे बड़े बहुआयामी सैन्य अभियानों में से एक है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के शीर्ष सैन्य अफसरों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचे और उनके समर्थक थे। उप वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों, 13 विमानों को नष्ट किया गया, 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इसके परिणाम सभी के सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान भारतीय सैन्य या नागरिक ढांचे के सामने कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने में असफल रहा। पाकिस्तान के अनुरोध पर ही अभियान को रोका गया था।

अगली खबर की बात करें तो 7 महीने के बाद 10 मई से शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर फिर से नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस एयर दिल्ली शिमला शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़े सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेंगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस बार यात्रियों को पहले के मुकाबले 65% से 96% अधिक किराया चुकाना होगा। दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के बीच बीते वर्ष सीट रियायती किराया करीब 4500 रुपये था, जो अब बढ़कर 7441 रुपये पहुंच गया है, यानी किराया करीब 65% बढ़ गया है। वहीं शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से शिमला के बीच किराया करीब 2100 रुपये था, जो कि बढ़कर 4125 रुपये हो गया है।

चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्री वेई फेंगे और ली शांगफू को भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा सुनाई गई, हालांकि दोनों को 2 साल की राहत दी गई है। यह सजा चीन की सैन्य अदालत ने अलग अलग मामलों में सुनाई। हंता वायरस से प्रभावित एक क्रूज शिप को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है। WHO ने सेंट हेलेना के जोहान्सबर्ग की उड़ान भरने वाले 82 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल 24 अप्रैल को शिप से कई यात्री बिना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के ही उतर गए। यह घटना शिप पर पहली मौत के करीब 2 हफ्ते बाद हुई। इससे वायरस के दूसरे देशों में संक्रमण की चिंता बढ़ गई है। नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका में अधिकारी अब 12 अलग अलग देशों के इन यात्रियों की तलाश कर रहे हैं। दूसरी ओर अर्जेंटीना के स्वास्थ्य अधिकारी और विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अटलांटिक क्रूज MV पर फैला घातक हंता वायरस उनके देश में शुरू हुआ था। जून 2025 से अब तक यहां 101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में दुगने हैं। विशेषज्ञों को मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अर्जेंटीना के वातावरण में हो रहे बदलावों से चूहों की संख्या बढ़ी है, जिससे यह वायरस तेजी से फैल रहा है। शिप पर अब स्पेन के कैनरी द्वीप की ओर जा रहा है। यहां से 3-4 दिनों में यह पहुंचेगा और शिप पर 140 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स अभी भी मौजूद हैं।

एप्पल ने भारत में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी 6 ग्रीन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी जो सोलर एनर्जी जैसे अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत में प्रदूषण कम करना और सप्लाई चेन को स्वच्छ बनाना है।

निकट भविष्य में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बार बार यूपीआई पिन डालने और ऐप बदलने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जल्द यूपीआई मेटा फीचर ला रहा है। इससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूपीआई पेमेंट क्रेडिट कार्ड जितना तेज हो जाएगा। अभी भुगतान के लिए मर्चेंट ऐप पर यूपीआई ऐप पर जाना होता है। नई तकनीक में यूपीआई अकाउंट मर्चेंट ऐप पर ही डिफॉल्ट सेव कर सकेंगे। फिर पेमेंट के लिए सिर्फ फेस आईडी या फिंगरप्रिंट जरूरी होगा।

उबर दुनिया का नंबर एक राइड बुकिंग ऐप है। करीब 70 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें से 63 में ये शीर्ष पर है। भारत में भी यह राइड के मामले में दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर रैपिडो है। तो श्रोताओं, आगे कार्यक्रम में आपके साथ साझा करेंगे ताजा तरीन खेल खबरें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

0: Bruja.
1: आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपके साथ साझा करते हैं आज की ताजा तरीन खेल खबरें। पहली खबर की बात करें तो अंक तालिका में अंतिम पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आतिशी शुरुआत की है। बारिश से प्रभावित आईपीएल के 50वें मुकाबले में मेजबान टीम ने खबर लिखे जाने तक 14 ओवर में एक विकेट खोकर 145 रन बना लिए थे। स्कोर में अकेले मार्श 51 गेंदों पर 9 चौके और 9 छक्कों की मदद से 107 रन बनाकर जमे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर निकोलस पूरन 9 गेंद में 14 रन बना चुके थे। इस आईपीएल सीजन में पहली बार खेलने उतरे अश्विन कुलकर्णी ने 24 गेंदों पर एक चौके से 17 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने से महज एक सिक्सर दूर खड़े हुए हैं। शनिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए सिक्सर मारते ही वैभव महज 15 साल की उम्र में T20 क्रिकेट में शहंशाह बन चुके हैं। हालांकि यह तमगा उन्हें महज रिकॉर्ड बुक में मिलेगा, क्योंकि उनके बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट प्रेमी पहले ही उन्हें अगला क्रिस गेल मान चुके हैं। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकवर्स टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 5-1 से हराकर टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक पक्का कर लिया है।

भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम इतिहास रचने से महज एक जीत दूर है। AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में शुक्रवार को यानी आज

जब टीम लेबनान का सामना करेगी तो या उसके लिए करो या मरो वाला मैच होगा, जिसमें जीत के साथ ही वे इस टूर्नामेंट में इतिहास में पहली बार नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएगी।

पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में गिरते कैच हार की बड़ी वजह बन रहे हैं। हैदराबाद के खिलाफ 33 रनों की हार के बाद कोच रिकी पोंटिंग ने खराब फील्डिंग को वायरस करा दिया है जो टीम में फैल रहा है। भारत के लिए आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 का गुरुवार के दिन मिला जुला रहा मुकाबला। अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद की महिला रिकवर्स टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियंस द कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह बनाई। भारत ने दक्षिण कोरिया को इतिहास में सिर्फ चौथी बार हराया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना पहला मेडल पक्का किया। तो श्रोताओं, ये थी आज की ताजा तरीन खेल खबरें। तो अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का यह कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति एक बार फिर से आपसे कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति

0: सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को

0: स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए हिमाचल डायरी का आज का अंक।

हिमाची डायरी के आज के इस अंक में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस अंक में हमीरपुर जिला के 4 केंद्रों में चल रही 10वीं कक्षा की रेगुलर छात्रों की पेपर मार्किंग का कार्य खत्म हो चुका है। केंद्रों पर अब SOS छात्रों की पेपर मार्किंग का कार्य तेज गति में चल रहा है। ऐसे में स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के रेगुलर छात्रों का फाइनल रिजल्ट 1-2 दिनों के अंदर कभी भी निकाल सकता है। बता दें कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा स्थापित हमीरपुर जिला के 4 मूल्यांकन केंद्रों में 10वीं कक्षा के रेगुलर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, जो कि अब पूरा हो चुका है। केंद्रों में SOS छात्रों की पेपर मार्किंग का कार्य भी प्रगति पर है, जबकि 10वीं कक्षा के रेगुलर छात्रों की पेपर मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में स्कूल शिक्षा बोर्ड 1-2 दिनों के अंदर 10वीं कक्षा का फाइनल रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकता है। विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 15 मई तक का समय दिया गया है। सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे इसका भुगतान 15 मई तक हमीरपुर शहर के भोटा चौक पर स्थित उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। विद्युत उपमंडल लमलू के सहायक अभियंता ज्ञानचंद भाटिया ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत सभी अनुभागों लम्बलू, बोहनी, ताल, टिक्कर, बोभीड़ा के सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर बिजली बिलों के साथ अपडेट कर दिए गए हैं। सभी उपभोक्ता स्वयं ऑनलाइन माध्यम से या लोकमित्र केंद्रों में अथवा उपमंडल कार्यालय लम्बलू में आकर बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। सहायक अभियंता ने बताया कि लम्बलू उपमंडल में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। पुलिस विभाग ने अवैध मॉडिफाइड साइलेंसरों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जन शांति में भी बाधा डालते हैं। खासकर युवाओं में बाइकों में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सामने आया है कि कई वाहन चालक जानबूझकर अपने दोपहिया वाहनों में ऐसे साइलेंसर लगवा रहे हैं, जिनसे पटाखों जैसी तेज आवाज निकलती है। इससे बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों और राहगीर को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात रिहायशी इलाकों में इस तरह की आवाजें लोगों की नींद और मानसिक शांति को प्रभावित करती हैं। पुलिस विभाग के अनुसार अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो जिला भर में अवैध मत्स्य शिकार और अवैध मछली बिक्री पर शिकंजा कसते हुए मत्स्यकी विभाग मत्स्य मंडल मंडी ने कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। विभागीय टीमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्त व निरीक्षण किए जा रहे हैं। सहायक निदेशक मत्स्य मंडल मंडी नीतू सिंह ने बताया कि कुछ मछली विक्रेता बिना बिल व अनावश्यक दस्तावेजों के अवैध रूप से मछली लाकर बेच रहे हैं। इसी के तहत गत दिनों पंडोह बाजार में गश्त कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई गई। चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में ही अवैध मत्स्य शिकार व अवैध मत्स्य विक्रय का कुल 11 मामले दर्ज किए गए और मौके पर कुल 5,900 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मंडी जिला की सिराज घाटी में आपदा के बाद अब ओलों ने किसानों और बागवानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां बुधवार को भारी बारिश और तेज तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों और बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। जानकारी के अनुसार विभाग के मुताबिक सेब के अलावा गेहूं, गोभी, बंद गोभी, मटर व अन्य फसलों को ओलों के कारण नुकसान पहुंचा है। विभाग ने सिराज के

0: प्रभावित पंचायतों का दौरा करने के बाद यहां पर नुकसान का आंकलन किया। घाटी में करीब 60 लाख के नुकसान का आंकलन करने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। तो श्रोताओं, हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:35 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: लहमर हुसैनपुरी और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे, राजशेखर का लिखा हुआ। संगीतकार थे कृष्णा और फिल्म का नाम तनु वेट्स मनु।

0: अली ब्रदर्स की आवाजों में आप सुन रहे थे हक फिल्म का गीत। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य।

आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।

0: दिन
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर,
2: चलो चले मितवा,
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शाश्वत सचदेव और जैस्मिन सांडिल्य और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे जैस्मिन सांडिल्य और संगीत शाश्वत सचदेव का था। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

लापता लेडीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल की आवाज थी। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से सजाया था। जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां।

0: सफर।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार थे विशाल मिश्रा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: फिर से आपका स्वागत है बहुत बहुत चित्रलोक कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
2: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
1: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
2: चलो चले मितवा।
1: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
3: चलते चलते
1: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
2: आजा शाम होने आई।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आपको आप सुनवा रहे हैं सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गाना। ज़ारा अज़ खान और जास मानक की आवाजें हैं। गीतकार हैं तनिष्क बख्शी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को के सम्मान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं, रक्तदान के प्रति जागरूक हों और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनें। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये। ये धड़क टू फिल्म का गीत है।

0: श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में रश्मि बिराग का लिखा गीत आप सुन रहे थे। धड़क टू फिल्म का नाम था। आप सुन रहे हैं इस समय चित्रलोक कार्यक्रम।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
5: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
4: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
5: चलो चले मितवा।
4: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए विविध भारती के सदस्यों के साथ। वॉक कीजिए
6: चलते चलते
4: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
5: आजा शाम होने आई।
0: आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। 9:15 और समय है एक और ब्रेक का।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजों में आर राजकुमार फिल्म का ये गीत।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन

0: पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से तीन दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए और 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा चंबा में 2,067, ऊना में 1,892, हमीरपुर में 1,572, बिलासपुर में 1,459, सोलन में 1,415, कांगड़ा में 1,407, कुल्लू में 1,383, सिरमौर में 917, शिमला में 784 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
0: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनाव के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक व चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। किन्नौर जिला में क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक विरासत के संरक्षण व उत्सव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज से 10 मई तक कल्पाकंडे के गोली में किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। ये उत्सव कल आयोजित होने वाले ग्लोबल बिग डे व हिमालयन बर्ड काउंट के साथ समन्वित रहेगा। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस फेस्टिवल का उद्देश्य किन्नौर व हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करना और स्थानीय समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन संरक्षण व सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित होगा और टूरिज्म को बढ़ावा देगा जिससे पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस पर हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूटेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 की इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। ये दिन युद्ध, आपदा और महामारी के दौरान राहत कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को समर्पित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया भर में संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य संकटों के दौरान जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के प्रयासों को ये थीम सलाम करता है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला

0: @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और वास्तुकार व शिल्पकारों को लाभ देने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के लागू हो जाने से जहां विभिन्न व्यवसायों में लगे कारीगरों का विकास हो रहा है, वहीं उन्हें 1,00,000 रुपए तक का ऋण सस्ती ब्याज दर पर 5% पर मुहैया करवाया जा रहा है। आकांक्षी जिला चंबा भी अपनी समृद्ध कला व संस्कृति के लिए जाना जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना यहाँ के शिल्पकारों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
1: चंबा का प्रसिद्ध चंबा रुमाल हो, यहाँ की चप्पल हो या यहाँ की प्राचीन धातु कला हो, इससे कई शिल्पकार वर्षों से जुड़े हैं तथा आज देश विदेश में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसे शिल्पकारों के उत्थान के लिए ही पीएम विश्वकर्मा योजना संचालित की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने से इस कला से जुड़े शिल्पकार काफी उत्साहित हैं और जिला के कई शिल्पकार इस योजना से जुड़कर इसका लाभ भी ले रहे हैं। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: शिमला जिला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी, अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL मैच खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स 11 की टीम कल शाम धर्मशाला पहुंची। धर्मशाला में खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोच रिकी पॉन्टिंग की देखरेख में टीम आज से अभ्यास करेगी। पंजाब किंग्स के लिए धर्मशाला के मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं। टीम को पिछले 3 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्लेऑफ की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए धर्मशाला में जीत दर्ज करना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स की टीम कल धर्मशाला पहुंचेगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, पूर्व CPS के सरकारी आवास खाली न करने पर हाईकोर्ट सख्त। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाईकोर्ट सख्त, पूर्व CPS के सरकारी आवासों पर कब्जे को लेकर प्रदेश सरकार से मांगा रिकॉर्ड। पंजाब केसरी की खबर है, नई दिल्ली शिमला के बीच 10 मई से बहाल होगी हवाई सेवा, शिमला धर्मशाला के बीच भी होगी उड़ान। हिमाचल में हाईटेक होगी सेब की खरीद फरोख्त, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, CM ने HPMC को फल खरीद की तैयारी के दिए निर्देश। दैनिक जागरण की एक खबर है, शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन। नामांकन के पहले दिन कुल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। शहरी निकाय व पंचायती राज चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। किन्नौर जिला में हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय जैव विविधता को उजागर करने के उद्देश्य से आज से 3 दिवसीय किन्नौर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित और 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा IPL का अहम मुकाबला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:30 होने को हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया। बुजुर्गों

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन

मैनेजर, बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे। जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समा

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

0: जिंदगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश बेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का है? मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रख मान।
1: सिकंदर, सिकंदर, क्या हुआ तुझे? तेरा मेरे यार चरण से झड़प हो गई।
3: नहीं बताती हूँ। दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं दुनिया में नहीं होता।
1: बस बस करो मेम साहब। क्या काम नहीं तेरे मेम साहब जिससे तू
3: नहीं? विशाल मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को
1: करता।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो।

0: विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
1: सिकंदर ये तुमने क्या किया?
2: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
0: तुम?
3: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
4: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए, मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
2: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
5: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास, वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में

0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए लघु वार्ता। श्रोताओं, आज की लघु वार्ता का विषय है विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रतिवर्ष 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस के संस्थापक और पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। यह दिवस युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के दौरान बिना किसी भेदभाव मानवता की सेवा करने वाले लाखों स्वयंसेवकों के निस्वार्थ योगदान और सिद्धांतों को समर्पित है। इस महान संस्था की स्थापना के पीछे की घटना की बात करें तो सन 1859 में स्विस व्यवसायी हेनरी ड्यूनेंट ने इटली के सालफेरिनो युद्ध के दौरान हजारों घायल सैनिकों को बिना किसी चिकित्सा सुविधा के तड़पते हुए देखा। इस भयावह दृश्य से आहत होकर उन्होंने स्वयंसेवकों की मदद से घायलों की सेवा की और बाद में सन 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का गठन किया गया। हेनरी ड्यूनेंट के मानवीय कार्यों के लिए उन्हें सन 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। श्रोताओं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है और दुनिया भर में जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता, रक्तदान और आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। यह दिन संदेश देता है कि युद्ध या संकट के समय में भी मानवता और करुणा सर्वोपरि होनी चाहिए। रेड क्रॉस के 7 मूलभूत सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। यही सारे 7 जो मूल सिद्धांत हैं, इसके कार्यों का आधार हैं। रेड क्रॉस की संस्थाएं दुनिया भर में 191 राष्ट्रीय सोसाइटियों के माध्यम से काम करती हैं और इनके स्वयंसेवक युद्ध क्षेत्र, शरणार्थी शिविरों और प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले राहत कार्य के लिए पहुंचते हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय भी इन स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस दिन का महत्व सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए प्रेरित करता है। मानवता को जीवित रखना एक ऐसा संदेश है जो आज के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां संघर्ष, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक असमानताएं लगातार बढ़ रही हैं। यह विषय हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता का स्मरण कराता है।

विश्व रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य युद्ध या आपदा में घायल व पीड़ित लोगों की सहायता करना है। स्वास्थ्य जागरूकता और रक्तदान को बढ़ावा देना है। जरूरतमंदों के लिए सेवा और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करना है। रेड क्रॉस दिवस को कई तरीकों से मनाया जाता है। इसमें सामाजिक सेवा कार्यक्रम, निशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर, सेमिनारों का आयोजन, स्कूली छात्रों, युवाओं को, स्वयंसेवकों को मानवीय सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं को उनके साहस और सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि यह सेवा, साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक है। यह आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इस दिन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि सहायता करना सच्चा धर्म है। इस बार के विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है मानवता को जीवित रखना। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कठिन समय में भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानवता है, जो दूसरों के गौरव और जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके साथ स्तंभों की बात करें तो मानवता, पीड़ा को कम करना और जीवन की रक्षा करना, निष्पक्षता, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आधार पर भेदभाव नहीं करना, तटस्थता, विवादों में किसी भी पक्ष का साथ ना देना, स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहकर मानवीय नियमों का पालन करना, स्वैच्छिक सेवा, बिना किसी लाभ के सेवा करना, एकता, एक देश में केवल एक ही रेड क्रॉस सोसाइटी हो सकती है। यह एक वैश्विक आंदोलन है जहां सभी देशों की संस्थाएं सम्मान हैं। इस दिन में दुनिया भर में बड़े स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं। उत्कृष्ट सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों में कई सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया तकनीक और सीमाओं में बंट गई हो, लेकिन एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक क्षण आए हैं जब विनाश, युद्ध और पीड़ा ने मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, पर इन्हीं अंधकार में परिस्थितियों के बीच करुणा, सेवा और सह अस्तित्व की एक ज्योति भी प्रज्वलित हुई है। रेड क्रॉस दिवस इसी ज्योति का उत्सव है। एक ऐसा दिवस जो न केवल सेवा और त्याग के मूल्यों का स्मरण करवाता है, बल्कि यह संकट की घड़ी में मनुष्य किस प्रकार अपनी संवेदनशीलता से दुनिया को बेहतर बना सकता है, ये भी बताता है। रेड क्रॉस केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक व्यापक मानवीय विचारधारा है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से यह संगठन वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे कि युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियों में भी मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक इस संस्था ने निरंतर मानव सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा को जीवित रखा है।
आज भारत में रेड क्रॉस का एक सशक्त विस्तृत नेटवर्क है जो जिला तथा स्थानीय स्तर पर फैला हुआ है और हजारों स्वयंसेवक इससे जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस केवल एक संगठन नहीं बल्कि बीते एक शताब्दी से अधिक समय से भारतीय समाज में करुणा, सहयोग और मानवता का जीवंत प्रतीक बनकर स्थापित है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रेड क्रॉस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने जन स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक प्रभावी पहलें की हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों तक जीवन रक्षक सेवाएं पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। रक्तदान अभियान के माध्यम से रेड क्रॉस ने रक्तदान महादान की पवित्र भावना को जन जन तक पहुंचाया है। नियमित रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, असंख्य जीवनों को बचाने का कार्य किया जाता है। तो श्रोताओं, ये दी जानकारी हमने आज की इस लघु वार्ता में विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:15 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले कवाली। तो बिल्कुल कवालियों से आज की महफिल सज चुकी है। आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं कार्यक्रम की ये पहली कवाली।

खराब आवाज दे रहा है दिले खानुमा खराब सीने में इस तरह अब है सांसों में बेताब है रूह है इश्क जान मरवा कुछ तो दे जवाब अब क्या बल दूं शिद्दत दर्दे निहास में दर्दे निहास में।

आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है महफिले कवाली। कार्यक्रम की अगली कवाली हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अपनापन से, और इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और साथियों ने।

श्रोताओं, ये रही कार्यक्रम की अंतिम कवाली आप सभी की रेडियो सेट्स पर, और इसे हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे, और इसे गाया है अमीन साबरी और फरीद साबरी ने।

0: तो श्रोताओं, इसी कवाली के साथ आज का ये महफिल कवाली कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजकर

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले अपने सारे श्रोतियां दा कार्यक्रम च अहे बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। पे लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग ता आओ अहे भी ना रंगां च डुबदे हैं, एक डुबकी लगांदे हैं, कने कार्यक्रम च सुनदे हैं ये प्यारा जिहा लोक गीत, क्योंकि दिखा ब्याह शादियां दा माहौल बनिया है तो यह बड़ा ही प्यारा जिहा ब्याह शादियां ते जुड़े आ लोक गीत आ। तो आओ मिलने सुनदे हैं इस लोक गीत चों।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: तपे श्रोतों, इसी सौगी आज कार्यक्रम लोकरंग उणित्वी संपन्न उन्दया, दो अनुमति नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
6: ये सुने जा सकते हैं।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने का आज दूसरा दिन है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन कल 16,891 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
8: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मंडी जिला में सबसे अधिक 3,731 जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 74 नामांकन पत्र भरे गए। इसके अलावा चंबा में 2067, ऊना में 1,892, हमीरपुर में 1,572, बिलासपुर में 1,459, सोलन में 1,415, कांगड़ा में 1,407, कुल्लू में 1,383, सिरमौर में 917, शिमला में 784 जबकि किन्नौर में 190 नामांकन पत्र दर्ज किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर।
7: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज से प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। उनका ये दौरा

0: प्रदेश में चल रहे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवास के दौरान वे मंडी जिला में विभिन्न संगठनात्मक एवं चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सौदान सिंह आज शाम मंडी पहुंचेंगे। कल उनका मंडी जिला में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों व चुनावी गतिविधियों में भाग लेने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नगर निगम व पंचायती राज चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनाने के लिए कल नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि सहयोग के तहत दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगे। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेडक्रॉस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2026 की इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना। ये थीम मानवता को जीवित रखने और अग्रिम पंक्ति के नायकों को सम्मान देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस भी है। ये दिवस लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा रक्तदान शिविर, जागरूकता रैली और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जाँच और सही उपचार से थैलेसीमिया मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। शिमला जिले के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे में 10 मई से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। ये सेवाएं 2 नवंबर 2025 से बंद थी। अब दोबारा सेवाएं शुरू होने से पर्यटन कारोबार और यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना, शुभम अदकल की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना।

0: पाना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के

0: छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। आज शाम 5 बजे गुराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

0: पंकज उधास की आवाज़ आपने सुनी, शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी।
1: रंग तरंग

रंग तिरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज़, मकबूल ख्वाजा के बोल, संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की पहली धड़कन।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 12 बजे है। लीजिए प्रस्तुत है हमारी सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल।

0: आज के इस वनिता मंडन कार्यक्रम में आप हैं अपनी सखी पूजा दीवान और मेरी सखी प्रीति के साथ। तो प्रीति, चलिए खोलते हैं आज की जानकारियों का पिटारा। आज की जानकारी के पिटारे में हम अपनी सखियों के लिए कौन सी जानकारी लेके आए हैं, प्रीति बताइए।
1: पूजा, आज के जानकारियों के पिटारे में भी हमारी सखियों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ में मनोरंजन हम लेकर आए हैं
0: जी।
1: और इस कार्यक्रम में विशेष तौर से हम अपनी सखियों से रूबरू होते हैं
0: जी जी।
1: और साथ में ही बात करते हैं विशेष दिनों के बारे में या जो कुछ भी घटित हो रहा है उनको जागरूक करने के बारे में। तो जैसे कि अब गर्मियों का मौसम है, मौसम हिमाचल में तो फिर थोड़ा सा बारिश हो रही है, अच्छा बना हुआ है मौसम
0: जी जी।
1: लेकिन फिर भी देखिए गर्मियां दस्तक देंगी क्योंकि महीना मई का है और गर्मियां दस्तक देने वाली हैं
0: जी जी।
1: तो इन दिनों हम देख रहे हैं कि गर्मियों में एसी फटने के मामले सामने आ रहे हैं, तो इन तरह की घटनाओं से, हादसों से बचने के लिए हमें क्या करना है
0: जी,
1: इस सब के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी सखियों से बातचीत करेंगे
0: जी।
1: तो देखिए गर्मी के मौसम में एसी फटने की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और इसका कारण क्या है। इसका कारण कई बार होता है कि बेहतर हम उस

0: रख रखाव नहीं कर पाते
1: जी जी
0: और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि हम इन इस तरह के जो हादसे
1: घटनाएं
0: होते हैं उनसे बच
1: बच
0: सके।
1: सकें। जी जी
0: जी
1: जैसे गैस लीकेज भी हो जाती है, हम उनका जो कंडेंसर होता है उससे गैस लीक होने से बहुत बड़ी जो दुर्घटना हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम उसको गैस को चेक करना चाहिए जिससे कि आग लगने की जितनी भी संभावना है वो ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसे हीट पकड़ लेता है तो वो फटने के कगार पे आ जाता है। जी
0: जी और देखिए कई बार क्या होता है कि एसी की जो कूलिंग करते हैं कंडेंसर कॉइल्स होते हैं वो
1: जी
0: भी
1: जी
0: अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार उन पे इतनी गंदगी जमा हो जाती है कि वो जो हवा है गर्मी को वो बाहर निकालते हैं वो नहीं निकाल पाते और
1: जी
0: सही
1: जी
0: तरीके से एक सामान्य प्रवाह बनने में दिक्कत रहती है और ये कंडेंसर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जिससे
1: जी
0: कि आग लगने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है।
1: लेकिन प्रीति, हमारे जानकार जो हैं वो बताते हैं कि जो कंडेंसर हैं वो तांबे के होने चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि एल्यूमिनियम वाले जो कंडेंसर हो जाते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन तांबा जो होता है एक बेहतर होता है हमारे लिए ऑप्शन उसका, तो तांबे वाले जो कंडेंसर हैं हमें यूज़ करने चाहिए।
0: जी और कई बार जैसे वोल्टेज का उतार चढ़ाव रहता है वो भी कंप्रेसर की जो परफॉर्मेंस है उस पर असर डालता है।
1: जी जी
0: तो अपने जो भी आपके आपने रखे हुए एसी उनको समय समय पर उनकी सर्विस करवाएं क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर उनका सही तरीके से देख रेख नहीं होती तो
1: जी
0: हमें पता नहीं लगता कि उसमें अगर कोई समस्या आ गई है या नहीं।
1: जी
0: तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जो है हम कई हादसों से बच सकते हैं
1: जी
0: क्योंकि भारत पर हम ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ देख रहे हैं दिन प्रतिदिन।
1: बहुत
0: कितनी
1: ज्यादा
0: ज्यादा हर साल गर्मी का प्रकोप जो है वो
1: लू
0: बढ़
1: पड़ती
0: रहा।
1: है। जी
0: जी
1: जी
0: क्योंकि देखिए अगर एक रिपोर्ट की माने तो भारत के 30 करोड़ घरों में से केवल 8% घरों में ही एयर कंडीशनर हैं
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी कुछ घर हैं जिनमें एक से अधिक यूनिट हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता एयर कंडीशनर बाजार जो है वो भारत में बढ़ रहा
1: बढ़
0: है।
1: रहा है।
0: तो यही बात है कि हम कोई भी चीजें ऐसे अपने उपयोग के लिए लाते हैं कि हमारा जीवन आरामदायक बने लेकिन
1: जी
0: उन जो भी मशीनरी है उसका रख रखाव करना भी हमारी एक बहुत ही जरूरी उत्तरदायित्व तो बनता है ताकि हम अपना और अपनों का ख्याल रख सके।
1: जी जी समय समय पर उनकी सर्विस करवाते रहना चाहिए, क्योंकि हम कई बार लापरवाही कर देते हैं कि अभी एसी चल रहा है क्या ही हो जाएगा, अभी एक साल हो गया क्या ही हो जाएगा,
0: जी
1: लेकिन जो घटनाएं हमारे साथ घटित तो होती हैं उसका हमें पता नहीं चलता है कब हो जाए, इसलिए हमें समय समय पर जो है उनकी जांच करवानी
0: जी
1: चाहिए।
0: और जब भी कोई एसी आप लगवाते हैं तो इस तरह का जगह लगवाएं कि वहाँ छांव हो या फिर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हवादार
1: जी
0: हो। ये नहीं कि वहाँ गर्मी
1: गर्मी
0: बाहर इतनी
1: हो
0: पड़ रही है और वो और अधिक गर्म हो रहा है और इस तरह की कोई दुर्घटना या कोई हादसा जो है वो
1: हो
0: घट
1: जाए।
0: जाए।
1: जी
0: जी
1: जी और एसी फटना जो है वो बहुत आजकल सामान्य ही हो गया, हम बहुत सारी खबरें जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन हम अपनी सखियों से यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी सुविधा लें उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और उसका सही तरीके से रखाव करना भी सीख लें।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: हम चीजें तो लगवा लेते हैं लेकिन
1: जी
0: जैसे आपने बात करी रख रखाव
1: जी
0: हर
1: जी
0: चीज अपनी मेंटेनेंस मांगती है उसका रख रखाव करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी
1: जरूरी
0: होता है।
1: है।
0: तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हमारी सखियां खुद भी सुरक्षित रह सकती हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित
1: सुरक्षित
0: रह
1: रख
0: सकती हैं
1: सकती हैं।
0: क्योंकि जानकारी सही होगी तभी हम उन चीजों को अपने जीवन में अपना पाएंगे
1: जी
0: और ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें अपने जीवन में होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए। जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: तो देखिए ये तो दी जानकारी इसके बारे में और
1: जी
0: कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम अपनी
1: प्रीति, हम
0: सखियों के साथ
1: जानकारियां तो
0: साझा करेंगे।
1: जी बहुत सारी लेके आई हैं, लेकिन हमारी सखियों का मनोरंजन भी बनता है,
0: तो बिल्कुल
1: तो क्यों ना उनको एक गीत सुना दिया जाए।
0: जी

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपनी सखियों का कार्यक्रम वनिता मंडल पूजा और प्रीति के साथ।
4: तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अपनी सखियों से कि गर्मियों के मौसम में कैसे जो भी आपने मशीनरी रखी है उसका ख्याल रखना है, और अब बात करेंगे कि इस बदलते मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें।
3: जी प्रीति, हमारी जो सखियां हैं अपने परिवार का तो पूरा ख्याल रखती हैं, उनको समय समय पर खाना देती हैं, उनकी हर काम में सहायता करती हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना कहीं भूल जाती हैं।
4: जी
3: तो हम चाहते हैं कि हम अपनी सखियों के लिए कुछ ऐसी टिप्स दें उनको कि वो अपनी त्वचा का ख्याल रख सकें।
4: जी बिल्कुल, देखिए गर्मियों के मौसम आते ही सबसे बड़ी जो एक जरूरत पड़ती है वो होती है कि अपनी त्वचा का खासा ख्याल रखना, क्योंकि इन दिनों टैनिंग बहुत होती है। और किस तरह का आपने फैब्रिक डालना है, सूती कपड़े जो आरामदायक हो कि आपको किसी तरह की एलर्जी ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है।
3: जी
4: तो वही है कि बदलते इस मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
3: जी
4: त्वचा होगी, आपके बाल हो गए, आंखें हो गई, क्योंकि जैसे है कि अब जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही, नष्ट हो रही है, और इससे अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उसका सीधा असर आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है।
3: जी जी, और जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर हमारा सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उसे हमारी

0: कई बार रैसेस हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, मतलब बच्चों की, बड़ों की, सबकी स्किन जैसे रेड रेड हो जाती है
1: जी।
0: तो उससे हमें कैसे बचना है ये हम अपनी सखियों को बताते हैं कि उनको क्या करना है टैनिंग से बचने के लिए। जो सूरज की किरणें होती हैं उनसे, उनके सामने नहीं बैठना है, हमेशा छाया में बैठना है
1: जी।
0: और खुद को हमेशा चाहिए कि वो सनस्क्रीन का यूज कर सकें
1: जी।
0: तो टैनिंग की समस्या को जो रोकना है वो हमें यही चाहिए कि हमें जो प्री मैच्योर एज है उससे, उसमें क्या करना चाहिए कि अपने खुद की त्वचा को पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए गर्मियों का मौसम है, छोटी छोटी बातें हैं, इनका खासा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
0: जी।
1: ये उपाय तो आप कर सकते हैं लेकिन कई बार आपको लग रहा है कि आपकी त्वचा पर खुजली है, जलन
0: जी,
1: है या लंबे समय तक दाने बने हुए हैं, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ की सलाह जो है वो जरूर लें क्योंकि कई बार कुछ चीजें आपकी जो त्वचा है उसको सही नहीं बैठती है। तो ये नहीं कि अपने डॉक्टर खुद ही बने रहे, अगर कुछ समस्या ज्यादा समय तक बनी है तो सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर आप उसका जो सलाह है या ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं
0: जी। क्योंकि अगर हम विशेषज्ञ से सलाह नहीं लेंगे तो हमें पता ही लगेगा कि हमें कौन सा रोग है या किस चीज से हमें एलर्जी हो चुकी है
1: जी,
0: समझ नहीं आएगी। तो हम अपने विशेषज्ञों से राय लेंगे, समय पर अपना जो है ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम अपनी स्किन का ख्याल रख सकते
1: जी,
0: हैं
1: बिल्कुल। और ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें बिल्कुल हल्के फुल्के सूती कपड़े डालें, बिल्कुल टाइट कपड़े ना डालें ताकि आपके सारे शरीर में एक हवा जो है उसका बहाव बना रहे
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि मौसम इस तरह का है कि अगर आप कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हैं या आपकी कई जगहों पर इस तरह की कोई खुजली या कुछ हो जाती है और आप टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो आपकी समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जरूरी होता है कि ढीले सूती कपड़े इस मौसम में पहनना
0: जी। और कुछ हमारी जो सखियां हैं वो ड्राइविंग भी करती हैं, स्कूटी वगैरह का यूज भी करती हैं
1: जी,
0: तो उन्हें चाहिए कि अपना जब भी हम बाहर निकले अपने चेहरे को सूती कपड़े से ढक लें
1: जी, अपने बालों को,
0: बालों को भी और त्वचा को भी, ताकि वो टैनिंग से भी बच सके और बालों को जो होने नुकसान है सूर्य की किरणों से उससे भी बचा जा सके।
1: बिल्कुल, और जैसे आप त्वचा की टैनिंग की बात कर रहे हैं तो अगर टैनिंग हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हमारी प्रकृति ने हमें दी हैं जो कि अपने ही किचन गार्डन में हमें मिल सकती हैं। जैसे एलोवेरा हो गया तो आप वो अपने चेहरे पर लगा सकती हैं, फिर दही या खीरे का उपयोग कर सकती हैं चेहरे पर और खाने में भी इसको उपयोग ला सकती हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, सारी चीजें ठंडक आपको देती हैं, तो इन चीजों का उपयोग करके जो है आप अपना खासा ख्याल रखती हैं
0: जी जी। और साथ में हमें जो अगर स्वस्थ रहना है, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है तो भरपूर मात्रा में जो है हमें पानी पीना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी बात है क्योंकि देखिए पानी जितना हम पिएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर में वो निकल जाते हैं
0: पसीने के जरिए, वो निकल जाते हैं
1: जी,
0: पसीने के जरिए तो निकलते ही है लेकिन हम अगर पानी नहीं पियेंगे हमें पसीना आता रहेगा तो हमें पानी की कमी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है तो पानी जरूर पीना है और 7 से 8 गिलास पीने हैं। अपने पानी में आप नींबू डाल सकते हैं या पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। जैसे अब गर्मियां शुरू हो चुकी हैं तो बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके लिए आप कुछ इस तरह की
0: ORS ग्लूकोज जो थोड़ा बहुत बना के
1: या लस्सी अपने घर की हो गई, पुदीने का कुछ आप उस तरह के कुछ चीजें बनाकर जो है अपने बच्चों को दे सकती हैं क्योंकि ये मौसम इस तरह का होता है कि इसमें खासा ख्याल रखने की जरूरत होती, चाहे हमारा खुद का अपना आप है या बच्चे हैं या घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं। इस मौसम में खासा ख्याल रखने की जरूरत होती है कि घर की चीजें ही उपयोग में लाई जाएं, ये नहीं कि बाहर कई बार हम चाहते हैं कि कुछ तला हुआ ना खाया जाए,
0: देख के
1: बीमार हो जाते हैं या फिर चलो खाने का मन है तो उस जगह की प्रॉपर आप पहले जानकारी हासिल करें कि साफ सफाई रखी है या नहीं।
0: जी जी जी बिल्कुल। और हमारे बच्चों जैसे हम अक्सर देखते थे पहले स्कूल्स में कई बार बच्चों को चक्कर आ जाते थे गर्मियों में धूप के कारण, तो हमें चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजें तो कुछ ना कुछ उसको खिला के भेजें क्योंकि अगर बच्चा भूखा रहेगा तो उसके शरीर में जो है कमजोरी आ जाएगी, उसको चक्कर आना आम बात है। तो हमें चाहिए कि हमेशा हम अपने बच्चों को खाना या कुछ भी फ्रूट खिला के ही भेजें।
1: बिल्कुल, देखिए सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, और बच्चों की बात हो रही है तो जिन बच्चों ने अभी स्कूल जाना शुरू किया है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरह थोड़ा समय लगता है उन्हें उस वातावरण में ढलने के लिए, तो उन्हें जैसे आपने बात करी कि कुछ ना कुछ तो जरूर ही खिलाना है, चाहे वो फ्रूट है, दूध है या ड्राई फ्रूट्स हो गए।
0: जी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खिलाना है लेकिन टाइम टाइम पे समय समय पर हम उनको खिलाते रहेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो तंदुरुस्त रहेंगे और उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल सही रहेगा।

0: और चाहे मौसम फिर कोई भी हो, स्वास्थ्य ठीक हो
1: स्वास्थ्य
0: तो
1: ठीक हो
0: वो मौसम हम आसानी से उसको एंजॉय करते हैं।
1: जी, क्योंकि प्रीति हमारा जो स्वास्थ्य है वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो हमारे शरीर ठीक है तो कहते हैं ना कि मन चंगा तो सब चंगा, वही
0: बिल्कुल
1: बात आ जाती है कि हम अपना खुद का ध्यान रखेंगे तभी हम अपने परिवार का ध्यान रख
0: बिल्कुल,
1: पाएंगे।
0: सखियां हमारी बिल्कुल तंदुरुस्त होंगी, ठीक ठाक होंगी, तभी वो हर काम में अपना मन लगा पाएंगी।
1: जी
0: तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपनी सखियों का ध्यान रखते हैं हम,
1: हम
0: तो
1: और
0: कार्यक्रम में सुनवाते हैं उनको एक और प्यारा सा गीत।
1: गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं हमारी सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल। तो प्रीति, हमारी जानकारियां तो हमने अपनी सखियों को बहुत दे दी, लेकिन आजकल सीजन जो चला हुआ है, शादियों का चला हुआ है, मैं खुद एक शादी से आई हूँ, तो सभी जो हमारी सखियां हैं वो नए नए रिश्तों में बन रही हैं, नई नई शादियां हो रही हैं, तो उनके लिए हम कुछ जानकारियां अपनी सखियों को देना चाहती हैं।
4: जी, देखिए शादी जीवन का बहुत ही खूबसूरत मोड़ होता है
3: जी।
4: एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है, लेकिन जरूरी होता है कुछ बातों का खासा ख्याल रखना, जैसे आपकी आपसी समझ सामंजस्य बिठाना, क्योंकि दो अजनबी लोग एक नए रिश्ते में बनते हैं। कई बार एक दूसरे को हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत चीजों की होती है।
3: कहते हैं ना कि शादी के बाद एक लड़की का तो नया जन्म होता ही है, लेकिन लड़के का भी नया जन्म होता है, क्योंकि वो भी नए साथी के साथ अपने जो अपनी
4: जीवन यात्रा शुरू करता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि विवाह केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि एक परिवार दो लोगों के बीच, दो संस्कृतियों के बीच होता है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जीवन का होता है। भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से आपको एक पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन वही होता है कि एक दूसरे को समझना, सबसे पहले तालमेल बिठाना, और सखियों की बात करें तो वही अपना घर छोड़ के एक अलग परिवेश में जाती हैं
3: जी।
4: जिस घर में हमने कहीं 25 साल बिताए होते हैं, उस घर को छोड़ना और नए परिवेश में ढलना
3: बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी सखियों के लिए, लेकिन ये रीत है कि जाना ही होगा। लेकिन हमारा साथी, हमारा पार्टनर जो है वो हमारा साथ दे, तो हमारी जो जिंदगी है वो हसीन बन जाती है।
4: बिल्कुल, देखिए रिश्ते को मजबूत बनाना है तो इसके लिए जरूरी है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की खूबियों को, खामियों को समझने की कोशिश करना, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करना, क्योंकि दो अलग लोग होते हैं, अलग विचारधारा रहती है। समझने का प्रयास जो है रिश्तों के शुरुआत में रहता है कि एक दूसरे को हम समझने की कोशिश करें।
3: प्रीति, एक शक और गलतफहमी
4: जी,
3: ये अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो तहस नहस कर देती है हमारी जिंदगी को, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो पार्टनर है उस पे विश्वास रखें। पहले तो ये बात है कि हम उस पे विश्वास करें, और हमारे पार्टनर, हमारे जीवन साथी को भी चाहिए कि वो हमारे विश्वास पे खरा उतरे।
4: बिल्कुल, देखिए बात यही है कि एक स्वस्थ रिश्ते की नींव ही है भरोसा
3: जी। भरोसा,
4: और आप अगर अपने रिश्ते को अच्छे भरोसे पर चलाते हैं तो आने वाली कई समस्याएं जो हैं उनसे आप बच सकते हैं
3: जी।
4: जो भी अगर आपके मन में कोई विचार है, आप खुले तौर पर अपने जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आप साझा कर सकते हैं
3: जी।
4: क्योंकि कई बार गलत फहमियों, जैसे आपने बात करी, अगर वो जीवन में आ जाए तो शुरुआत में ही वो रिश्तों को तोड़ देती है। तो जरूरी होता है रिश्तों को मजबूत बनाना, जो भी आप में कुछ, आपको कुछ इस तरह की समस्या है, उनका खुल के अपने पार्टनर के साथ आप साझा बातें कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें सीखते हैं।
3: बिल्कुल, और नए घर में हमारी जो सखियां जा रही हैं, उनके जो पार्टनर है उनको चाहिए कि वो हर चीज में उनका साथ दे, उनको समझे, उनकी भावनाओं को समझे कि वो हमसे क्या चाहती हैं। क्योंकि अगर नए परिवार में जाना है तो उसे नए परिवार में, नए बच्चे का जन्म होता है तो उसे पता नहीं, हमें खुद को पता लगता है कि उसको कैसे संभालना है, लेकिन वो हमारा पार्टनर, हमारा जो परिवार है, मायका और ससुराल दोनों एक परिवार होता है, तो हमारे मायके वालों को भी चाहिए और ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो जो हमारा नया सदस्य आ रहा है, हम उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें समझें, तो हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो बहुत अच्छी चलेगी
4: जी। बिल्कुल, और हमारी सखियां भी थोड़ा सा कोशिश करें उस परिवेश को समझने की, ढलने की, और मन लगाएं, तभी देखिए जीवन में अगर रोमांच बना रहे, रिश्तों को समझने आप, तो जीवन यात्रा बहुत ही प्यारी है। ये रिश्ते बनाए ही इसलिए हैं ताकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से

0: जाने और हमारे पारिवारिक रिश्ते जो है, माहौल जो है, सकारात्मकता बनी रहे, क्योंकि घर में खुशी होगी, आप खुश होंगे तो स्वाभाविक है कि आप दूसरों में भी खुशियां बांटेंगे
1: जी। और आजकल हमारी सखियां जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो भी नौकरी करनी कर रही हैं, उनका साथी भी नौकरी कर रहा है, लेकिन दोनों की एक दूसरे की समझ है, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, हर काम में सहायता करते हैं, तो वो खुशी खुशी अपनी जो भी वो रोजगार है उसको भी कमा रहे हैं, साथ में उनकी जीवन की गाड़ी भी अच्छी चल रही है।
0: बिल्कुल, एक सफल शादी के लिए आपसी समझ, प्रेम, समर्पण, त्याग, एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: और प्रीति, इसमें सहनशीलता इसकी बहुत कमी देखी जाती है आजकल के बच्चों में, तो चाहिए हमें कुछ हद तक सहनशीलता रखनी ही चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्योंकि सहनशीलता होगी तो हम एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं, एक दूसरे को समझने का मौका दे सकते हैं, जिसके कारण हमारे जो जी नई जिंदगी मिल रही है उसको आनंद।
0: बिल्कुल, सुखी वैवाहिक जीवन के कुछ मूल मंत्र हैं कि जिनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आपने अपना एक सफल वैवाहिक जीवन अपना लेके चलना है। शुरुआत में सभी को मुश्किल आती है, ये नहीं कि बहुत आसान होता है जीवन, शुरुआत सभी के लिए कठिन होती है, एक दूसरे को समझना, तालमेल बिठाना, लेकिन धीरे धीरे जैसे बात करी कि इन सारी चीजों का, समझ का, प्रेम का, विश्वास का, इन सारी मूल मंत्रों का आप ध्यान रखो तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी हमारी सखियां हैं नए इस परिणय सूत्र में बंध रही हैं,
1: उनको पहले तो बहुत बहुत बधाई हम दोनों की तरफ से, हैप्पी मैरिड लाइफ आप सबको। तो आपको हमारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करती हैं हम दोनों की गपशप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वनिता मंडल। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा पूजा का प्यार भरा नमस्कार। शत्रु सीमा लांघ ना जाएं, खड़े रहें चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं, भले ही अपने प्राण गवाए हैं, भरा हुआ इतिहास हमारे वीर के बलिदानों से।

अभी आपने सुना वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म नाम से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। आवाजें हैं जसविंदर नरुला और सोनू निगम की।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम।

0: ਜਾਹੇ ਵੀਰੇ।
1: लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मानसे, आवाजें हैं उदित नारायण की और साथी।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है, अब से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें रिले किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों, विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी, उससे पता चलता है कि कितनी शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है, बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आंख में दुआओं का समंदर होगा, विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा, फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफर जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है, तो आप किसी शादी समारोह में गए कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो वो आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल हम आपको सौतन फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सावन कुमार का लिखा हुआ ये गाना है। संगीत किसका है ये आपको बताना है। हमने आपसे कहा था कि शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया, सुनिए ख्याल।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहाँ का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश

छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था। मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है, तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई और वो बार बार परोसते रहे और मैं ज़बरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी की बेटी की शादी थी। अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई। वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा, तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें दो गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छेड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक केप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सबने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, बजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही है बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो उसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गाँव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुंचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहां के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज़, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज़ किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई। एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है। बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीढ़ी देखते हैं तो यह सब रस्में देख कर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं, जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं, एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ, ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है, ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े।

अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ किसी की यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

नवरंग फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे कहना चाहिए कि तुम्हारी शादी हुई है, माता पिता से रिश्ता नहीं टूटा है, तुझ पे कोई भी मुश्किल आ जाए मायके के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। सचमुच ये सीख भी बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो तो आप बिना झिझक यहाँ आइए, हमें बताइए, आपकी तकलीफ़ का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ये विश्वास अगर उन्हें है तो वो हंसते हंसते उस घर से विदा हो जाती है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेटी को विदा करते समय माता पिता को उसे धैर्य, सहनशीलता और समझदारी से काम लेने की सीख देनी चाहिए। ससुराल में नए रिश्तों का सम्मान करने, मीठी वाणी बोलने और घर के काम में आत्मनिर्भर बनने की सलाह उसे देनी चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी को विदाई के अवसर पर एक ही सीख सबको समान देना चाहिए, आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखना है आपको, ये अब घर तुम्हारा है, ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जाए, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां

पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान

0: अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
5: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
6: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
5: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
7: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जो इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं, इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
8: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
5: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या। इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो, हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जय किशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न।
1: देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में शामिल होने वाले कुल उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष मार्च में 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित ये योजना सेवानिवृत्ति के बाद नागरिकों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रबंधन को परिसंपत्तियां एनपीएस के तहत लगभग 16,00,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 8,96,00,000 से अधिक हो चुकी है। इस योजना का शुभारंभ मई 2015 में किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले स्पीति घाटी के लोसर गांव के युवा खिलाड़ी तंजिन टशी को सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय टीम में हिमाचल से शामिल एकमात्र खिलाड़ी तंजिन टशी ने प्रतियोगिता में कई शानदार गोल किए और चीन के खिलाफ मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री ने तंजिन टशी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए 2,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तंजिन टशी जैसे खिलाड़ी प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सरकार आइस हॉकी सहित शरतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इस दौरान ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से काजा में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से आइस हॉकी स्टेडियम और 8 करोड़ रुपए की लागत से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है और इस वर्ष कार्य शुरू होने की संभावना है। पीटी के इस होनहार खिलाड़ी की उपलब्धि से पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
2: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के कर्मचारियों से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वायदा किया था और इसे अपनी प्रमुख गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस में बने रहने का निर्णय लिया। सिकंदर कुमार ने कहा कि आज स्थिति यह है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस प्रकार का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देशभक्त यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
4: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
2: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।

0: और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार की जनविरोधी, आर्थिक रूप से विफल और पक्षपातपूर्ण नीतियों को लोगों के बीच उजागर किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है भारत में उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। कृषि विकसित भारत के विजन में एक आधारभूत स्थान रखती है। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 4.45% की दर से वृद्धि दर्ज की है, जो पूर्ववर्ती दशकों की तुलना में सर्वाधिक है। इस परिवर्तन के केंद्र में बागवानी है, जो भारत की उच्च मूल्य फसल अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभरी है। फलों और सब्जियों से लेकर फूलों, मसालों और बागान फसलों तक बागवानी ग्रामीण परिदृश्य को रूपांतरित कर रही है। पारंपरिक मुख्य फसलों के विपरीत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें प्रति इकाई भूमि पर अधिक प्रतिफल उत्पन्न करती हैं और कृषि सकल मूल्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में कृषि के विकास के प्रेरक के रूप में बागवानी क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कृषि फसल उपक्षेत्र के सकल मूल्य उत्पादन में लगभग 37% योगदान देता है और भारत की कृषि विकास की दिशा में एक आधारशिला के रूप में उभरा है। उत्पादन में निरंतर वृद्धि इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है, जो न केवल समग्र कृषि उत्पादन में बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर मूल्य संवर्धन में भी परिलक्षित होता है। बागवानी क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति इसके रणनीतिक महत्व को और सुदृढ़ करती है। देश सब्जियों, फलों और आलू के उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। वैश्विक उत्पादन में फलों का योगदान 9.18% तथा सब्जियों का योगदान 8.18% है। केंद्रीय बजट 2026-27 ने उच्च मूल्य कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विशिष्ट क्षेत्र आधारित भिन्न रणनीति पर बल दिया है, जो कृषक आय बढ़ाने और उत्पादन प्रणालियों में विविधता लाने की इसकी क्षमता को स्वीकार करता है। नारियल क्षेत्र भारत की बागवानी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं, की आजीविका का समर्थन करता है। भारत नारियल उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 22.44% योगदान देता है तथा खेती के क्षेत्रफल के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, जो विश्व के कुल नारियल क्षेत्र का करीब 19.23% है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत नारियल विकास बोर्ड ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नारियल की खेती और संबंधित उद्योगों के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और कम उपज देने वाले पेड़ों को उन्नत पौधों और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से प्रतिस्थापित करना शामिल है। भारत में काजू और कोको की खेती के संगठित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं। बादाम एक अन्य उच्च मूल्य समतोषण मेवा नट फसल है, जो विशेष रूप से हृदय संबंधी तथा पाचन स्वास्थ्य के लिए अपने पोषण और स्वास्थ्य लाभों के कारण व्यापक रूप से पहचानी जाती है। बागवानी सांख्यिकी इकाई कृषि व किसान कल्याण विभाग के अनुसार

0: भारत में वर्ष 2024-25 में बादाम का उत्पादन करीब 14,000 मीट्रिक टन रहा, जिसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में केंद्रित है। जम्मू कश्मीर देश के कुल उत्पादन में 83% से अधिक योगदान देता है और कश्मीर क्षेत्र में प्रमुख प्रसंस्करण और विनिर्माण केंद्र स्थापित है। हिमालय क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण मेवा फसल चिलगोजा है, जो अत्यंत मूल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स का उत्पादन करती है। इसे अक्सर चैंपियन ऑफ द रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। ये फसल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जनजातीय समुदायों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चिलगोजा पाइन उत्तर पश्चिमी हिमालय की आंतरिक शुष्क चोटियों में उगता है, जहां कम वर्षा और भारी शीतकालीन हिमपात जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये प्रजाति पारिस्थितिक रूप से अनुकूल होने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
2: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
1: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही,
2: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल सही
2: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा, मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपकी विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
1: जी जी
2: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
2: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
1: चेस खेल की शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
2: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे, वो दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
1: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
2: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे याद हो कि बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
1: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन।
1: हाँ।
0: कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: ओ बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत
1: और
0: सारे जी।
1: हाँ, और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से।
0: हसीना भी तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता है ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, कुदरत का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा मेरी नाम है ग्राम बैठू पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता
0: जी,
1: जानकारियाँ भी मिलती हैं रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: श्रीलंका इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। मैं पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं रेडियो पे, जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ, जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: और सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ,
1: किया और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से और मेरी उम्र मतलब लगभग 43 साल हो गई।
0: जी,
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: और सखी सहेली सुनना थी, यही मैं सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है, पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत।
2: पान

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई
0: झनकार,
1: से।
0: झनकार मुंबई से। क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं
0: जी
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात
1: मुझे
0: है,
1: अच्छा
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है
1: हाँ,
0: कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी भी
0: जी
1: उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है, क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है।
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: 28 से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं नहीं
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने,
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत् है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की,
0: क्या
1: कि
0: बात
1: वो
0: है।
1: जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तत् लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी तो
0: कहा।
1: अपूर्णता है, थोड़ा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है
1: हाँ
0: ना
1: हाँ इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी।
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को, अपने गुरु को, सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी, तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत् तत् थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तत् तत् थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, ता थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं, जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो
1: जी
0: मुंह
1: जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झनकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आपने।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है। हाँ
0: सीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में
1: अच्छा था और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कुछ
0: क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है, इसमें
0: जी,
1: पानी देना है। हाँ
0: तो वहां पे पशु भी हैं,
1: है ना,
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी
0: चारे की बात की ना, तो वहां पे पशु भी
1: है ना,
0: हैं।
1: है भैंस
0: क्या है वहां पर पशुधन में?
1: भैंस।
0: भैंस हैं? कितनी भैंसे हैं वहां?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: भी
0: देने
1: बहुत है
0: का।
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके बैठ
1: छाव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी है, पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं। फिर
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता
1: वहां
0: होगा।
1: पे घर रहे, उसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितने

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी, इंदौर
1: जी
0: से। मनीषा
1: जी
0: जी
1: मध्य प्रदेश।
0: जी क्या
1: जी
0: कर
1: मैम,
0: रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो
1: सच्ची
0: बहुत अच्छी बात है
1: कहूँ
0: ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो
0: जी
1: वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता है उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सनम वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी, मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी, आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी, मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना,
0: जी
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: दीदी, फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: से।
1: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288। 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती, मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

वहीं लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लब्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजर

करना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं

जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साये में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजाकर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूं।

मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो, इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहां से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का के जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थी। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी।

ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां

चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले मां ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, मां तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भदरगी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजने को है। और अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिन्हें रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें

0: विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं आज शाम के कार्यक्रमों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं आज शाम हमारे केंद्र

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम और युवा साथी अपना कार्यक्रम युव मंच सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से शाम 6 बजे व शाम 7:45 पर। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05 पर और 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे शाम 7 बजे और भक्ति संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:05 पर। रौनका गराइंदियां ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 7:25 पर और विविध भारती के कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनेंगे 8 बजे से लेकर 8:45 तक और रात 9:15 से लेकर रात 10 बजे तक। समाचार संध्या का अंक 8:45 पर और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। श्रोताओ आज है शुक्रवार और आज के दिन आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। 10:30 पर समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातें का। देर रात 11 बजे हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओ ये थी हमारे केंद्र से आज रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:07 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस कृष्ण भजन के साथ।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:16 हो चुके हैं और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के बाकी के भजन हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं माता की ये भेंट।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का भजन संध्या कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युवमंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज के इस युवमंच कार्यक्रम में। और आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। दोस्तों, हमारे जो खास करके युवा साथी हैं, युवा यानी जिन्होंने अभी प्लस टू के एग्जाम दे दिए हैं, वो अब युवा ही हैं और बहुत सी उनके मनों में अभी उलझने होंगी कि हम किस तरफ आगे बढ़ें, कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा। अभी जो है वो नीट का एग्ज़ाम भी हुआ, बहुत सारे बच्चों ने जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा और कई सारी परेशानियां अभी उनके दिमाग में चल रही होंगी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता वो धक धक सी जो है वो लगी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने उम्मीद तो बहुत की होती है लेकिन उम्मीद से कम हमें मिलता है। पर एक बार फिर से कोशिश करेंगे, फिर से जो है हम इस जंग को लड़ेंगे। क्योंकि अगर हम हार गए या फिर हमारे मन ने जो है वो कहीं हार मान ली तो फिर हमें कोई नहीं उठा सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि अपने आप से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं होता। और आपकी मनोस्थिति सिर्फ आपको ही पता होती है, आपको ही पता होती है कि आपने कितनी तैयारी की है या किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था किसी चीज़ के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी जॉब के लिए। तो ये सब आपको ही पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की है, दूसरा कोई उस चीज का आंकलन नहीं कर सकता। तो अपने आप को किसी से कम मत आंकिए। आप जहां हैं वहां तभी हैं क्योंकि आपसे बेहतर वो चीज कोई नहीं कर सकता। बहरहाल बातें हम इस कार्यक्रम में करेंगे और आज हम आपको जानकारी देंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, भारत में जैव प्रौद्योगिकी एक स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रही है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF के अनुसार भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 15% से अधिक की निरंतर वृद्धि दर से बढ़ेगा। ये उल्लेखनीय वृद्धि जो है ये उल्लेखनीय है कि 15% से अधिक की निरंतर वृद्धि दर से बढ़ेगा और वृद्धि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और पर्यावरण अनुसंधान में नवाचारों द्वारा संचालित है। ऐसे क्षेत्र जहां जैव प्रौद्योगिकी एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। 2025-26 में भारत में बीएससी जैव प्रौद्योगिकी पढ़ाई करना केवल एक डिग्री का विकल्प नहीं है, ये खोज, नवाचार और वैश्विक प्रासंगिकता पर आधारित भविष्य में प्रवेश का द्वार है। अब आपको बताते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ साइंस बीएससी 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम है जो जीव विज्ञान को तकनीकी नवाचार के साथ एकीकृत करता है। ये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए आणविक जीव विज्ञान, आनुवांशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान की अवधारणाओं को लागू करने पर केंद्रित है। छात्रों को उन्नत प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग करने, अनुसंधान करने और जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक अनुप्रयोगों को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम उन्हें जैव सूचना विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों से भी परिचित कराता है, जिससे वे उभरते वैज्ञानिक रुझानों के अनुकूल ढलने के लिए तैयार होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से आकर्षक बनाने वाली बात इसकी अंतः विषयक प्रकृति है। ये कई क्षेत्रों के द्वार खोलती है, चाहे आप बीमारियों के इलाज, खाद्य सुरक्षा में सुधार या जलवायु परिवर्तन के समाधान पर काम करने के लिए उत्सुक हों। अगर हम बात करें पात्रता की और प्रवेश प्रक्रिया की, तो भारत में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए करने के लिए छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये जो हैं इनके मुख्य विषय होने चाहिए और प्लस टू पास होना चाहिए। अधिकांश विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 60% कुल अंक अनिवार्य होते हैं, हालांकि ये भिन्न भी हो सकता है। प्रवेश योग्यता के आधार पर या CUET या विश्वविद्यालय विशिष्ट परीक्षाओं जैसी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से हो सकता है। एक बार दाखिला लेने के बाद छात्रों को जैव प्रौद्योगिकी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं में एक मजबूत आधार प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। इंटर्नशिप, कार्यशालाएं, प्रयोगशाला आधारित प्रशिक्षण अक्सर कार्यक्रम का
अभिन्न अंग होते हैं जो छात्रों को उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करते हैं। बात करें अगर हम पाठ्यक्रम की तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम छात्रों को जीवित प्रणालियों की कार्यप्रणाली और मानव लाभ के लिए उनमें हेर फेर करने के तरीकों की व्यापक समझ प्रदान करता है। इसके विषयों की बात करें तो आणविक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, माइक्रो बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, जीव रसायन, जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, ये सब पाठ्यक्रम में विषय जो हैं वो शामिल होते हैं। छात्रों को अनुसंधान परियोजनाओं और सेमिनारों में भाग लेने का अवसर भी मिलता है जिससे उनके विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होती है। CRISPR, CAS9 जीन संपादन, सिंथेटिक बायोलॉजी और पुनर्योजित चिकित्सा जैसे उभरते विषयों को वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए विश्वविद्यालय कार्यक्रमों में तेजी से शामिल किया जा रहा है। कई छात्र जो हैं वो ये जानना भी चाहते हैं कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की तुलना बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी जैसे जीव विज्ञान के समान पाठ्यक्रमों से कैसे की जा सकती है। हालांकि ये सभी डिग्रियां जो हैं वो जीव विज्ञान में एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना अलग फोकस है, कौशल सेट और करियर पथ भी है। इन सबको, ये सब डिग्रीज जो हैं वो आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है। जैसे जीवन विज्ञान से ये संबंधित हैं, लेकिन ये डिग्रीज जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर आप स्वास्थ्य सेवा, कृषि, फार्मा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुमुखी करियर चाहते हैं तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चुनें, और अगर आप सूक्ष्म जीवों को समझने और नैदानिक निदान संबंधी या प्रयोगशाला आधारित भूमिकाओं में काम करने में आपकी गहरी रुचि है तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी चुनें। अगर आपको डेटा कोडिंग और जीव विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी को इकट्ठा करना पसंद है तो बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स चुनें, और अगर आप खाद्य उद्योग, उत्पाद, नवाचार और सुरक्षा नियमों में रुचि रखते हैं तो बीएससी खाद्य प्रौद्योगिकी चुनें। दोस्तों, ये तुलना दर्शाती है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अपनी व्यापकता और व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट है। यही कारण है कि ये उन छात्रों के लिए पसंदीदा विकल्प है जो कई करियर विकल्प चाहते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मा जैसे उभरते क्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता रखते हैं। बात करें अगर कार्यक्षेत्र और करियर की तो भारत में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले एक दशक में जबरदस्त वृद्धि हुई है। स्नातक फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आप रोजगार पा सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विद, नई दवाओं, टीकों और चिकित्सा उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि में वे फसलों की पैदावार बढ़ाने और कीट प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने में योगदान देते हैं, और पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी विद अपशिष्ट प्रबंधन और जैव ईंधन और टिकाऊ प्रथाओं पर काम करते हैं जो पारिस्थितिक पदचिन्ह को कम करते हैं। जैव सूचना विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान के विकास ने जीव विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI तथा डेटा विश्लेषण के संगम के नए रास्ते खोल दिए हैं। नौकरी के पदों में रिसर्च एसोसिएट, बायोप्रोसेस इंजीनियर, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, लैब टेक्नीशियन और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर शामिल हैं। 2026 में जैव प्रौद्योगिकी का परिदृश्य कई अत्याधुनिक नवाचारों को लेकर आ रहा है, और सिंथेटिक बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र दवा, भोजन और ऊर्जा उत्पादन के तरीकों को नया रूप दे रहे हैं।

जैव सूचना विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा विज्ञान के एकीकरण ने डेटा आधारित अनुसंधान को अधिक कुशल और सटीक बना दिया है। भारत में बायोफार्मा और कृषि जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ते निवेश के साथ साथ सरकार समर्थित मेक इन इंडिया और बायोटेक स्टार्टअप पॉलिसी जैसी पहलों से अनुसंधान और उद्यमिता के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार हो रही है। वर्तमान तकनीकी रुझानों के अलावा भारत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल कर रहा है और 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की बायो ई3 यानी अर्थव्यवस्था पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। ये नीति जैव विनिर्माण और जैव सूचना पहल के लिए एक ढांचा स्थापित करती है जो पारंपरिक विनिर्माण से पुनर्योजी जैव आधारित उत्पादन को की ओर बदलाव को बढ़ावा देती है। और इस पहल का लक्ष्य जो है वो 6 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करना है। उनमें सबसे पहला आता है जैव आधारित रसायन और एंजाइम, दूसरा है कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, तीसरा प्रिसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, चौथा है जलवायु प्रतिरोधी कृषि और पांचवा है जैव ईंधन और कार्बन कैप्चर और आखिर में है भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। बायो एआई हब और बायो फाउंड्री बायो मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ये कार्यक्रम भारत के हरित विकास और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के छात्रों और स्नातकों के लिए ये नीति अनुसंधान जैव विनिर्माण उद्यमिता और उच्च प्रभावशाली करियर में अपार अवसर खोलती है, साथ ही 2047 के लिए भारत के जैव अर्थव्यवस्था लक्ष्यों में योगदान देती है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें हम इस विषय को लेकर और भी करेंगे, पर उससे पहले हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के बाद सुनेंगे एक गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में, और हम बात कर रहे हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद जैव प्रौद्योगिकी को अक्सर गलत समझा जाता है। ये एक आम धारणा है कि जैव प्रौद्योगिकी स्नातक केवल प्रयोगशालाओं में ही काम कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता में वे आईटी, विपणन, नीति निर्माण और डेटा विश्लेषण जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सफल होते हैं। एक अन्य गलत धारणा यह है कि केवल जो पीजी डिग्री करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वही पीजी डिग्री जो है वही करियर की गारंटी देती है। लेकिन आज उद्योग में अनुसंधान और उद्योग दोनों क्षेत्रों में कुशल बीएससी स्नातकों के लिए कई प्रवेश स्तर के पद उपलब्ध हैं, और जैसे जैसे जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों को बदल रही है, भारत इस वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 2026 में भारत में बीएससी जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने से विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में रोमांचक अवसर खुलते हैं। सही शिक्षा, व्यवहारिक अनुभव और जिज्ञासा के साथ छात्र स्वास्थ्य से लेकर स्थिरता तक वैश्विक चुनौतियों के समाधान तैयार कर सकते हैं। जो लोग इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे इसके बारे में जो है वो थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय के बारे में सोच सकते हैं। पर विषय कोई भी हो, अगर आपका मन किसी और चीज को लेकर है या फिर आपके मन में जो है वो कोई दुविधा है, तो आप किसी करियर कंसल्टेंट से जो है वो

कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपनी करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ही जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं जब हम या फिर जब प्लस टू के बाद कोई हम करियर ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं। और देखिए, अगर आपका मन किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आप यही करना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ है, अगर आपका मन किसी चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से जो है वो प्रसन्न है, तभी आप उस चीज़ में जो है वो सफल हो पाते हैं, वरना नहीं। आपको अगर ज़बरदस्ती भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए, लेकिन चाहे वो कॉलेज अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मन उस विषय को लेकर थोड़ा अटपटा सा है, या आपके मन में कुछ डाउट है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये मेरा मनपसंद विषय नहीं है, तो फिर तुरंत उससे हट जाइए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को आगे लेकर जाने का जिसमें किसी का मन ही ना हो। और कहते भी हैं ना कि अगर हम किसी काम को अगर हम दिल से करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल, हम कार्यक्रम में बातें भी करेंगे, और अब हम बातें करेंगे, जैसे कि हमने अभी बात की बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की, और हम बात करेंगे अब प्लान बी की, जो हमेशा हमें जो है वो तैयार रखना चाहिए। जी हाँ, चाहे आप छात्र हों, व्यवसायी हों या नौकरी पेशेवर, जीवन में कई बार आपको ऐसे संवादों में शामिल होना पड़ता है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है, किसी व्यक्ति से सौदे की बातचीत हो सकती है, या आपके बॉस के साथ कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसे कूटनीतिक किस्म के संवादों में समस्या तब आती है जब आपके पास प्लान बी ना हो, यानी अगर ये अवसर हाथ से निकल जाए तो तुरंत कोई और विकल्प ना दिखे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और उसे डर महसूस होने लगता है। इसीलिए आपको जो है वो पहले से ही अपना प्लान बी जो है वो तैयार रखना चाहिए। जैसे अब हमारे बहुत से ऐसे जो हैं वो युवा साथी होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, उन्होंने बिल्कुल प्लान बी तैयार रखा होगा कि अगर हमारा इस बार क्लियर नहीं होता है या फिर हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हम ये चीज करेंगे। इसीलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपना प्लान बी जो है वो हमेशा रेडी रखें। आपके पास हमेशा जो है वो कोई बड़ा या उपयुक्त विकल्प होना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार छोटे छोटे विकल्प भी आपकी स्थिति को मजबूत बना देते हैं। अगर आप पूरी किस तरह किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर हैं, तो एक छोटी सी वैकल्पिक व्यवस्था भी आपको सहारा दे सकती है। इससे सामने वाले को संकेत मिलता है कि आप पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं हैं, और यही बात उसे अपनी शर्तों में लचीलापन दिखाने के लिए प्रेरित करती है। जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, तो हम डर की वजह से जल्दबाजी में जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपने आप को शांत रखें, और हो सकता है कि सामने वाला भी किसी न किसी रूप में आप पर ही निर्भर हो। अगर आप केवल अपनी कमजोरियों पर ध्यान देंगे तो सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए एक बैलेंसिंग आपका एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग एटीट्यूड अपनाना बहुत जरूरी है। और इस दौरान जो है वो तुरंत हाँ या ना कहना भी जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आप तुरंत हाँ या ना कहें। कई बार समय लेना ही सबसे प्रभावी रणनीति होती है। आप सामने वाले से सोचने के लिए समय मांग सकते हैं और इस स्थिति का शांतिपूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसे छोटे छोटे कदम भी उठा सकते हैं जो बिना सहमति के ही आपकी स्थिति को मजबूत बनाएं। ये प्रक्रिया आपको धीरे धीरे एक बेहतर और मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद कर सकती है। इसमें संवाद का तरीका बेहद महत्वपूर्ण होता है। सामने वाले से धमकी भरे अंदाज में बात करने के बजाय आप अपनी बात को शांति और सहज तरीके से रखें, ताकि टकराव की स्थिति ना बने और बातचीत भी नियंत्रण में रहे। आप ये भी कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में आपको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना पड़ सकता है, साथ ही अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से भी रखा जा सकता है। तो श्रोताओं, ये तो थी प्लान बी की बात, और अब हम कार्यक्रम में बात करेंगे मनोरंजन की।

दोस्तों, सफर तो चलता ही रहेगा। बहरहाल, हमें इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का सफर जरूर यहां पर खत्म हो रहा है, पर नई जानकारियों के साथ कल फिर से आपके साथ जो है वो इस कार्यक्रम में मिलेंगे और मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले कार्यक्रम यानी सफर सुहाने गाने नए पुराने में। बहरहाल, इस कार्यक्रम से दीजिए अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवमंच, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। FM बैंड 101.8 MHz पर शाम के 6 बजने को हैं और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में एकीकृत डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अब तक करीब 63,000 मामले निपटारे के लिए प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
1: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिवस मानवता, सेवा और सहायता की भावना को समर्पित है। विश्व रेड क्रॉस हर साल 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ऑन द साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के पक्ष में खड़ा होना है। इस मौके पर बच्चों और रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें रेड क्रॉस का स्टिकर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने भी रेड क्रॉस फंड के लिए अंशदान दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से रेड क्रॉस फंड में उदारतापूर्वक अंशदान का आग्रह किया और कहा कि इस फंड से एकत्रित धनराशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा शिंकुला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण बढ़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दाचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दाचा श्रृंखला सड़क मार्ग के खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज शिमला में चारों नगर निगमों सहित नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर पार्टी के जिला व ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक ली। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव से संबंधित सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम को हर रोज फीडबैक देने को कहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के इस सफर की शुरुआत जवानी दीवानी फिल्म के इस गीत के साथ, जो एक हलचल सी पैदा कर देता है हमारे दिल में। तो क्यों ना सुने ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

बिल्कुल दोस्तों, दिल में हलचल हो जाती है जब प्यार हमें किसी से पहली पहली बार होता है और वो चेहरा हमें अचानक से दिखता है, तब हमारे दिल में ज़रूर हलचल होती है। और हलचल कई बार जो है वो डर की भी हो जाती है, कहीं हम किसी एग्ज़ाम में जा रहे हों या फिर कुछ भी हो, इंटरव्यू हो हमारा, या फिर कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि हमें पता ना हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हलचल तब भी होती है। पर इन सब हलचलों से अच्छी है किसी का चेहरा देख के दिल में हलचल होना, है ना? और ऐसा ही एक

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:15 हो चुके हैं और सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सफर सुहाने गाने नए।

0: पुराने प्रोग्राम के बाकी के गीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

बिल्कुल दोस्तों, जब प्यार होता है एक नया खुमार और एक अजीब सा नशा जो है वो होता है। बहरहाल प्रोग्राम है सफर सुहाने, गाने नए पुराने। अगला गीत अलीशा चिनॉय का गाया, फिल्म का नाम है क्या लव स्टोरी है।

जी बिल्कुल, बात बनाने की कोशिश करेंगे तो बात ज़रूर बनेगी। और फिलहाल यहाँ से बात बन रही है कि अब ये कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म किया जाए और आप सबसे लेते हैं इजाज़त। लेकिन उससे पहले आपको बता दें फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था एन एक्शन हीरो। और इसी के साथ ही आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी दोस्त सुकृति को इजाजत दीजिए। फिर यूं ही चलते चलते किसी और दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: आंदे सारे ही किसान बागवान भाई बहनों जो नमस्कार कने
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: जी तद उम्मीद ही कि यहाँ दे सारे ही किसान बागवान भाई बहन जी ऐसे सेहतमंद होने, क्योंकि मौसम जे ऐसे आजकल लगीरा बदलना,
1: जी
0: कने इस तरह दे मौसम च जे ऐसे कई तरह दी बीमारियां समारियां लगने दा भी डर बनी रहंदा, क्योंकि दे आ ना आजकल एक ता फसला दी कटाइयां दा काम शुरू हुआ, ता धुप्पे जे ऐसे आहे खेतरां च लगी रे रहंदे भी है, कने जाली जे बड़ी गर्मियां ते आंदे ता मन करदा भई घर आंदे ही जे ऐसे ठंडा ठंडा पानी पीए या पक्खा लगाई ने कने जे आहे ठंडी हवा लीए भी
1: जी
0: आए,
1: जी
0: ता दे दे कम्मा कारा ते फेरी सर्द गर्म होने रहा जी ऐसे इन दिनों च बड़ा डर बनी रह रहा।
1: बिल्कुल। कने इस सोगी ही ये भी डर रहा था ये है कि तिना जे हाँ धुप्पे ते काम कार करा दे आनंद के ना एकदम जैसे बरखा पे याद ही ता भी जैसे सर्द गर्म जैसे हो याद है ये तो
0: जी
1: तिस्ते भी बचाव ताए जरूरी यही है कि अहाँ जैसे एहतियात बरतन कने ये जे नभांदा तापमान आ तिस जो जाची करने ही अपने कम्मा कारा जो जैसे निकलना।
0: जी तू तापमान की गल की, अगर आज के दिन दे तापमान की गल करिए ना है, ता ज्यादा ते ज्यादा तापमान रहे आज 31 डिग्री सेल्सियस, कने घट तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस।
1: जी तो दिखा तापमान ते हाँ अनुमान लगाई सकते हैं कि गर्मी भी यही कने मौसम भी चीजें ऐसे थोड़ी ठंडक भी यही तीन संचा प्यागा था ठंड यही यही तो इस दे साबा ने ही अहाँ अपने कामकाज जैसे करने हैं माल पशुओं जो भी जैसे बीमारियां समारियां ते जैसे बचाना ही है कने गर्मियों ते भी बचाना ही है इस सौगी ही अपने घर परिवार के सदस्यों की भी देखभाल का जरूर जैसे ध्यान रखना ही है।
0: जी इन दिनों च जे ऐसे साफ सफाइया दा हाँ जो खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जे है ना से मक्खी मच्छर एकदम से तैयार हो जाते भी है, कने यहाँ जो पता कि ये मक्खी मच्छर जे ऐसे बीमारियां जो फैलाने दा काम करते भी है, खासकर जेडी यहाँ दी रसोई घरी पई तिथि जे ऐसे यहाँ जेड़ा खाना बनाना से पूरी सफाइया दा ध्यान रखी ने कने बनाना, पौष्टिक तत्वों ते भरपूर अहां दा खाना होना चाहिए, जेड़े पेय पदार्थ है तिना दे तरफ जे ऐसे ज्यादा इन दिनों च जोर देना चाहिए, जिया लस्सी होई गई भी है, नींबू पानी हो गया, सिकंजी हो गई भी है,
1: जी जी
0: तो दे दे जे ऐसे आजकल खान पान रखना चाहिए, कने सोगी सोगी जी ऐसे खेती बाड़ी दे भी इन दिन जे ऐसे काम कार थोड़ा बदी आंदे भी है।
1: बिल्कुल। दिखा एक फसल जैसे हंदे किसान ने अपनी अंदर कीती नहीं है कने दूजी फसल दी तैयारी जैसे हंदे किसान भाई जैसे तैयार करना जैसे शुरू करी इंदे क्योंकि तैयारियां अगर हां पहले करी लेंगे ना ता तालो जे बत्तर पौंदी है ता तिस ताई जैसे हां जो हबड़ा दबड़ी जैसे नहीं पौंदी है ता
0: जी
1: तिस ताई जरूरी यही है कि सारे ते पहले हां केड़ी किस्म दा चुनाव करना ही है किस तरीके दी किस्म हुंदियां ही हन। दिखा आने आले दिनां च जैसे हां खरीफ दी फसलां दी बिजाई जैसे करनी है ता तिस ताई यही है कि अहां किस्मां दा चुनाव कर लेन कने कुती ते हां जो अच्छी किस्मां दी जैसे मिली सकदियां कने तिना किस्मां दा किस तरीके कन्ने भड़वार हुंदी कितनी तिना ते औसतन हां जो उपज मिली सकदी है तिस दे बारे च अगर हां जो जानकारी हुंगी ता अहां जैसे टाइमा रहंदे ही आने आली फसलां दी तैयारी जैसे शुरू कर सकदे हन।
0: जी तू ए खरीफ दी फसला दे बारे च गल कीती, ते खरीफ दे मौसम च जे ऐसे जेड़ी छलियां हुंदी या मक्की हुंदी भी है ना, तिस दी आहे प्रमुख फसल जे ऐसे लगांदे भी है ना, ता आज अपने किसान भाइयां जो आहां दसना भी है या बे आहां जो किस तरह दी किस्मा दा जे ऐसे चुनाव करना चाहिंदा, ताकि आहां जो छलियां दी जे इसे अच्छी उत्पादन मिलो भी है, कने आहां दे किसान भाइयां जो जे ऐसे तिसते अच्छा मुनाफा मिली पाओ भी है या।
1: बिल्कुल। दिखा ये जे मक्की दी फसल हुंदी है ता ये भी एक अहां दे मोटे अनाजा बिच जैसे आंदी है ता तिस ताई जे ऐसे जरूरी यही है कि अहां अच्छी किस्मा दा चुनाव कर गे ता तिना बिच अनुमोदित किस्मा दी अगर गल करिए ता गिरिजा कंपोजिट L118 ये किस्म जे इसे अहां दे प्रदेश दे निचले या मध्यवर्ती या फिर तिथि जे ज्यादा बरखा हुंदी है तिना जमीना ताई जे ऐसे ये किस्म जे इसे हुंदी है क्योंकि तिथि जे ऐसे पानी दा निकास जैसे सही नहीं हुंदा ही है ता तिथि ऐसे हा किस्म दे चुनाव जे ऐसे हां करी सकदे हन।
0: जी यह किस्मत च क्या होंदा कि जेड़ा छलियां दा बूटा होना ना से मध्यम ऊंचाई आला होंदा भी है, तना तिस दा मोटा होंदा, कने पत्ते जे ऐसे गहरे हरे रंगा दे कने सीधे होंदे भी है, तब इस जे ऐसे एक एक ही बूटे च दो दो जेड़ी छलियां इसे लगने दी जे इसे संभावना रहंदी भी है, कने इन्हां दा जेड़ा छिलका होंदा ना छलियां दा है बिल्कुल कसीरा रहंदा भी है, कने दाने जे ऐसे हल्के नारंगी रंगा रहे कने कठोर होंदे भी है, ए किस्म लगभग 3.5 ते 4 महीने च पक्की ने कने जे इसे तैयार होई जांदी, कने औसतन उपज जे ऐसे 40 क्विंटल प्रति हेक्टर हिसाब ने किसान भाई ले सकदे भी है।
1: बिल्कुल। कने अगली किस्म की अगर हाँ गल करिए ता अर्ली कंपोजिट ए जे इसे 750 ते 1450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र बिच जैसे उपयुक्त किस्म जैसे मानी जाती है इस दे पौधे जैसे मध्यम लंबाई कने मोटे तने वाले जैसे होंगे है कने अधिक पैदावार की गल करिए ता इस बिच जैसे हाँ जो जल निकासी जैसे बनाना बड़ी ही जरूरी होंगी अगर जल निकासी नहीं बना

0: रसायन होंगे है ना तीनों जो, जे ऐसे हाँ एग्रेसन जी एन या थिरम कैप्टोन बोर्डो मिश्रण बरगंडी मिश्रण फाइटोलान या फिर जीरम कार्बेंडाजिम होगी एड़े जे हजे अपेक्षित मात्रा च बीज होंगे तीनों सोगी जो असं मिश्रित कर सकते हैं कने इन रसायना की सहायता सोगी कई तरह के रोग तीन जे कणका जो लगता ये है जौं जो लगता ये है जौई जो लगता ये है फिर या फिर कई बार कंड रही आँदी है गेहूं का बंट रही आँदा ये है या खुली कंग्यारी रोग जैसा लगी आँदा ये है मक्की का बीज गलन पौध झुलसा रोग धान का ब्लास्ट रोग हो गया भूरा धब्बा रोग हो गया टमाटर का अल्टरनेरिया रोग हो गया मिर्च कने शिमला मिर्च ज फल सड़न ब्लाइट या फिर एंथ्राकनोज राजमास या फिर एंथ्राकनोज कोनाधार या धब्बा फ्लोरी पत्ता धब्बा रोग मटर का जड़ सड़न या फिर सफेद जड़न रोग हो गया आलू च कॉमन स्कैब ब्लैक स्कार्फ पाउडर स्कैब इत्यादि हजे रोग होंगे तिना पर भी नियंत्रण जैसे हो जाता ये आ
1: इस सोगी जे अस ऐसे जैविक विधि द्वारा जे अस जीवामृत तैयार करी ने कन्ने भी बीजा का उपचार जे अस करी सकते भी है कन्ने जैविक विधि ने कन्ने क्या होंदा भी है आ भी आहां दा खर्चा जे अस बिल्कुल जीरो होंदा भी है आ आहे जे अस घरे ही ए जीवामृत तैयार करी सकते भी है कन्ने इसने कन्ने जे अस अपने जेड़े भी आहां दे बीज है जेड़ी आहां फसला लगानी तिना दे बीजा जो उपचारित करी ने कन्ने जे अस लगाई सकते भी है ते इस ते जे अस कोई भी रसाई नहीं या कीटनाशक खरीदने के ताय अहां दा खर्चा भी नहीं होना भी है आ कने अहां दी जेड़ी भी अहां फसल लगानी से भी बिल्कुल स्वस्थ होनी कने रोग मुक्त होनी भी है
0: बिल्कुल कने एक जैविक तरीका जे ऐसे किसी भी तरह का कोई प्रदूषण भी जे ऐसे नहीं फैलांदा ही है मानव स्वास्थ्य पर भी इस पर दा कोई प्रभाव जे ऐसे नहीं पौंदा ही है कने लंबे समय तक जे ऐसे रोग या फिर कीट नियंत्रण जे ऐसे रहंदा ही है
1: जी ता ए ता गल बात रही कि बीजोपचार जे ऐसे अहां जो किया करना चाहिंदा कने इस ते जे ऐसे अहां जो क्या क्या फायदे मिलते भी है अगर अहे बीज उपचारित करी ने बांगे ना तो कई तरह की बीमारियां दी जे इसे रोकथाम होई आंदी भी है
0: बिल्कुल
1: ता इन्हें सारियां गल्लां बातां सोगी हुण कार्यक्रम विच फिर सुनना है मिठड़ा जिहा
0: लोक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरल में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता

0: घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परम्पराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

0: में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हो चुके हैं और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी, आशा भोसले का गाया ये राम भजन, फिल्म का नाम था नील कमल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जूली फिल्म का ये कृष्ण भजन, और इसे गाया है आशा भोसले व उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का ये भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:25 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम रौनका गराइंदियां।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 7:25 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका गराएं दिया।

0: कार्यक्रम रौनकां गराएं दिए सुनने आले आंदे सारे ही श्रोताओं जो मेरा यानी कि रमा दा कने मेरे ने सोगी
1: आशा दा प्यार भरा
0: नमस्कार। दिखा भई आशा बबू हाँ इस कार्यक्रम रौनकां गराएं दिए बिच जी असे अपने सारे ही सुनने आले सोगी ढेर सारिया गल्लां बातां साझा करदे हन कने सोगी सोगी गल्लां बातां हां दी एड़ी हुंदी हन तिस बिच जी असे हां दे गांव दा विकास इस सोगी हां दे समाज दा विकास कने क्या क्या दिन जे असे महत्वपूर्ण क्या क्या कामकार जे असे हां अपने गांव ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਸੋਗੀ ਜੈਸੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
1: ਜੀ। ਕਨੇ ਇਹ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम

0: ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रौनकां गराइंदियां।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 7:44 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा श्रृंखला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के उद्देश्य से आज राज्य सचिवालय शिमला में डिजिटल गेट पास प्रणाली और यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए प्रमुख इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पहल

0: जनता व सरकार के बीच डिजिटल सेतु का कार्य करेगी, जिससे जनसंपर्क अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली विभिन्न सरकारी विभागों को एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक संबंधी आग्रह भेजने की सुविधा भी प्रदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एक बैठक में नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व हिमाचल सदन और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली में निर्माणाधीन हिमाचल निकेतन के कार्य की समीक्षा करते हुए परियोजना को 15 जून से पहले पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में आगामी 17 मई को होने वाले 4 नगर निगमों और शहरी निकायों में होने वाले मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश की 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। किन्नौर जिला में आज विभिन्न पदों के लिए कुल 613 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि लाहौल स्पीति में 67 नामांकन भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में वाणिज्यिक आपूर्ति लगभग 70% तक बहाल हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कमी नहीं है।
1: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ओपीएस को कर्मचारियों के हित में बताकर लागू किया, लेकिन आज पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने वाले कर्मचारी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि आज स्थिति ये है कि एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार लगभग 60% डीए दिया जा रहा है, जबकि ओपीएस कर्मचारियों को राज्य सरकार की दरों के अनुसार केवल 45% डीए मिल रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि समान पद, समान कार्य और समान जिम्मेदारियों के बावजूद कर्मचारियों के बीच इस तरह का अंतर पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर बनाए गए इस भेदभाव को तुरंत समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों को समान दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा हमेशा कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी कर्मचारियों की आवाज को मजबूती के साथ उठाती रहेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सभ्यता, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं के महत्वपूर्ण प्रतीक भी हैं। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के प्राचीन बैजनाथ मंदिर में दर्शन किए और देश व प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने हिमाचल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 9 मई को प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव

0: रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दारचा श्यंकला सड़क पर बर्फ हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व उपायुक्त किरण भड़ाना ने इस सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने दाचा श्रृंखला सड़क पर बर्फ हटाने और मार्ग बहाली का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सड़क अब डबल लेन के रूप में तैयार है, जिस पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहन चल सकेंगे। प्रशासन ने कहा है कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित की जाएगी। पर्यटकों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को यात्रा से पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी मौसम और सड़क संबंधी एहतियात और नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। दाचा श्रृंखला सड़क मार्ग खुलने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों की आवाजाही को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में शुरू हुआ। कोटशिरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।
2: जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस है, हिंदुस्तान कैसे उसमें उभरता हुआ इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, वो सारे टच होंगे। यहाँ पर जो एक्सपर्ट आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये जो दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये अपने आप में सक्षम होगी, इनोवेटिव होगी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए एक्सपर्ट इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: सम्मेलन में विशेषज्ञ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, पर्यावरण व तकनीकी सहित सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे, ताकि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और दैनिक खर्च चलाने के लिए लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है, जो इस सरकार की विफल आर्थिक नीतियों का सबसे बड़ा प्रमाण है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास न तो आर्थिक दृष्टि है और न ही वित्तीय प्रबंधन की कोई स्पष्ट नीति। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय केवल महंगाई बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की आवाज उठाती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसंपर्क को सुगम बनाने के लिए राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने प्रदेश सरकार पर ओपीएस व एनपीएस कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर भेदभाव करने का लगाया आरोप। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में कल होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। और लाहौल स्पीति जिला में बर्फबारी से बंद दारचा श्यंकला सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर के केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 8 बजने को हैं और कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: हे भगवान, हर एक नट पर एक नई आवाज।
1: उहां, उहां, उहां।
0: ओह ऑलमाइटी, बस एक अदद फरियाद है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना।
1: उहां, उहां, उहां, उहां।
2: जोसेफ।
3: यस डॉक्टर।
2: तुम अभी गया नहीं रोजी के पास?
0: रोजी? अभी जाता हूँ, ये चला वो चला।
2: देखो, साथ लेकर आने का मैं अंदर है।
0: राइट डॉक्टर, साथ लेकर आने का मैं अंदर है। ओह रोजी, आई एम कमिंग रोजी, रोजी।
3: डॉक्टर साहब अंदर हैं क्या?
0: हाँ जी डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल हैं। बैठिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
4: गुड मॉर्निंग कंपाउंडर साहब, आप बड़ी जल्दी में हैं क्या?
0: बिल्कुल जल्दी में है। बैठिए वर्मा साहब, अभी बैठिए। ये गया, वो आया, वो गया, ये आया।
3: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या?
4: शायद अंदर ही हैं।
3: अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचीज को वर्मा कहते हैं
4: और मुझे कुमार।
3: ओ कुमार, आपके कितने साहबजादे हैं कुमार साहब?
4: जी अभी तक तो
3: समझ गया, समझ गया। तो आपका पहला तजुर्बा है
4: जी आपका।

0: अजी अपनी बात ही छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे 4 गिनती 5।
1: पांच?
0: क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक की प्लानिंग कर रहे हैं।
1: लक की प्लानिंग?
0: जी हाँ साहब, लक की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर सातवें साहबजादे आए और उधर हम।
1: आपका लक खुला।
0: बेशक बेशक, हम तो पामिस्ट्री में पूरा विश्वास रखते हैं।
1: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
0: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
1: अजी साहब, हो सकता है छठे और सातवें साहबजादे एक ही साथ तशरीफ ले आए।
0: अब हाँ, वो हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है।
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: पता नहीं साला बात करता है कि फिल्म के हीरो हीरोइन के मापिक टेलीफोन पर डुएट गाना गाता है। चार मरतबा ट्राई किया पन साला एवरी टाइम एंगेज।
1: किसको फोन करना है डॉक्टर साहब?
0: अपने मिसेस को करता है, किसी और को नहीं।
1: वो क्या यहाँ नहीं है?
0: क्या मगज मारी? अरे वो इधर होएगा तो हम उसको फोन करेंगे। बाबा वो पिंजरा पोल मैटरनिटी होम में है।
1: अच्छा, तो आपने एक और मैटरनिटी होम खोल दिया?
0: ओ माय गॉड, क्या मगजमारी। अरे बाबा, पिंजरा पोल मैटरनिटी में वो डॉक्टर नहीं, मरीज है। मरीज है?
1: तभी हम जैसे आप भी रिजल्ट के चक्कर में है डॉक्टर साहब।
0: रिजल्ट? काय का रिजल्ट? कैसा रिजल्ट? अरे कौन सा रिजल्ट का चक्कर? हेलो, यस, डॉक्टर पालना वाला स्पीकिंग। व्हाट? मिसेस पालना वाला? वो इधर नहीं है। आप कौन है? आप प्रेसिडेंट मंडल की महिला है तो? अच्छा अच्छा, हाँ, आप महिला प्रेसिडेंट नहीं, महिला प्रेसिडेंट का तरफ से बोलता है। हाँ हाँ, आपका महिला मंडल से हमको क्या मतलब बाबा? क्या महिला मंडल का वाइफ तुम्हारा प्रेसिडेंट है? क्या साला मगज मारी है? ऐसा महिला मंडल का प्रेसिडेंट तुम्हारा वाइफ है? देन व्हाट? आज शाम महिला मंडल के जलसा में तुम लोग हमारा मिसेज पालना वाला का टॉक रखना मांगता है, पर काहे को बाबा? फैमिली प्लानिंग पर? अरे तुमको और कोई नहीं मिला? क्या बोला? आने की हालत में नहीं, पर बाबा तुम्हारा मतलब क्या है? सबका सब किसी दूसरे मैटरनिटी होम की पेशेंट है। पर हम बोलता है अपनी लिस्ट में एक नाम और भरा दो, मिसेस पालना वाला। फालतू मगज मारी ओइच महिला मंडल। अरे महिला मंडल।
2: एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
0: सबर करो नहीं जरा।

0: Good God! Hello? Dr. Ganju, palna wala hai. What? I am impatient. No, not at all, doctor. Please inform me immediately. Okay.
1: Doctor sahab.
0: Aap apna patient le jao. Usko false pains tha.
1: What?
0: Haan, 2 week baad aane ka.
1: Achha, doctor. Thank you.
0: Haan. और मिस्टर वर्मा
2: जी,
0: हम तुमको लास्ट टाइम बोला था तुम अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है. मर्डर?
2: डॉक्टर साहब वो,
0: अरे बाबा उसको ब्लड प्रेशर है, वो वीक है और तुमको पॉपुलेशन.
2: डॉक्टर साहब बात ये है कि देखिए
0: क्या मगजमारी है.
2: वो डॉक्टर साहब पामिस्ट.
0: पामिस्ट?
2: हाँ पामिस्ट. वो लक लक
0: पामिस्ट अली लक पामिस्ट अली लक.
2: डॉक्टर साहब वो तकदीर तकदीर पामिस्ट बोला.
0: ओ डैम पामिस्ट. देखो तुम अपना पेशेंट ले जाओ, पामिस्ट के पास ले जाओ. अभी अली इजी भगत लक आणि तकदी तकदी आणि पामिस्ट आणि मगज मारी. हॅलो डॉक्टर पालना वाला. अरे बाबा बंडूक वाला नाही पालना वाला. व्हाट मेजर सिंग? रॉन्ग नंबर.
3: डॉक्टर डॉक्टर साहब वो आ रही है.
0: आएंगा तो अंदर भेज देने का.
3: पाउंडर साहब आज डॉक्टर साहब का दिमाग बड़ा गर्म लगता है. वो आई और दिमाग ठंडा. बिल्कुल ठंडा, बर्फ से भी ठंडा.
2: वो कौन?
3: अब बोलो तुमको इतना भी नहीं मालूम?
2: नहीं.
3: वो परिस्थान

0: की हूर है, मेरे मन की रानी है, दिल को घायल करने का मसाला है, रोजी उसका नाम है, दाल पे तिल पहचान है।
1: अच्छा।
0: अरे भाग जाग गई इस मैटरनिटी होम के।
1: कैसे?
0: अरे मेरे ब्रादर डॉक्टर मैम साहब पिंजरा पोल में, मैडम मिरांडा नर्स बीमार।
1: अच्छा।
0: आया धनवंती का आदमी भाग गया, वो गई काम से। अब बताओ, एक अदद डॉक्टर, एक अदद कंपाउंडर और एक अदद बुढ़िया आया से कहीं मैटरनिटी होम चल सकता है?
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: नहीं।
0: लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है।
2: यार किसी तरह डॉक्टर साहब का गुस्सा ठंडा करो तुम बस।
0: अभी तुम जाओ।
1: अच्छा।
0: एक घंटे बाद आना, मौसम बदल जाएगा।
2: अच्छा अच्छा, तो मैं जाता हूँ, एक घंटे के बाद आता हूँ, एक घंटे के बाद आऊंगा। जोसेफ?
0: यस डॉक्टर।
2: ओ आई नहीं?
0: जी नहीं, फिर जाऊं?
2: क्या मगज मारी किडर पे नहीं जाने का? उफ, आज तो माइंड ही चाउट हो गया।
0: वो आएगी, इन हो जाएगा।
2: ओ शट अप।

0: சலா எவ்ரி டைம் எங்கேஜ் எங்கேஜ் எங்கே.
1: குட் மார்னிங் டாக்டர். அப்பனா பேஷண்ட் அட்மிட் கரனா ஜி.
0: பேஷண்ட் கிடர
1: ஓ பஸ் ஸ்டாண்ட் பே ஜி. பஸ் ஸ்டாண்ட்
0: ஓ பஸ் ஸ்டாண்ட் பர் ஓ டும் பேஷண்ட் கா ஸ்டாண்ட்.
1: பஸ் கி கியூ மே தா ஜி. பஸ் ஆயா கண்டக்டர் போலா ஏக் ஆத்மி ஏக் ஆத்மி. ஹம் உஸ்கோ ரிக்வெஸ்ட் கர்தா பஸ் ஸ்டார்ட் ஹோ கயா ஜி.
0: கிட்னா பச்சா லோக ஹை.
1: 6
0: only 6
1: sabka sir daughter hai daughter hamara friend bolta umeed pe duniya qayam
0: then
1: every time ladka ka umeed mein 6 daughter aa gaya doctor
0: aur satwa ke waste to beta aaya
1: ya ya yo idhar to ladke ke waste aaya ji
0: are idhar koi guarantee ladke ka baba
1: yap ka maternity home to top doctor
0: bas bas kai ko maska laga
1: maska nahi doctor अपन स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का आदमी शहर के सारे मैटरनिटी होम का डाटा कलेक्ट किया जी. लड़के का टॉप एवरेज आपके मैटरनिटी होम का जी.
0: क्या मगज मारी जेंटलमैन. हमारा इधर कोई बेड पल खाली नहीं और कोई स्टाफ पल नहीं.
1: प्लीज डॉक्टर अपन को सातवां डाटर नहीं मांगता.
0: बोला ना खाली पीली मगज मारी नहीं मांगता बाबा. समझा दूसरी जगह जाओ.
1: ये दूसरा जगह होता जी तो इधर काय को आता डॉक्टर जी.
0: माय गॉड जोसेफ जोसेफ जी हटाओ हटाओ इस मगज मारी को यहाँ से हटाओ बाबा.
1: यो आपको आप हमको मगज मारी बोलता जी.
2: तो तुमको मगज का टानिक बोला जी.
1: देखो हम बड़ा खराब आदमी.
2: देखो अपन भी अच्छा आदमी नहीं है.
1: देखो देखो मेरे को हाथ नहीं लगाने का. मैं तुमको मारेगा. तेरे को छोड़ेगा नहीं. हम बहुत खराब आदमी है.
2: बार
1: तो तुम फाइनल बोले था हमारा पेशेंट को एडमिट नहीं करना.
2: अरे बोला ना नहीं करेगा.
1: ठीक है ठीक बात है. हम इधर स्ट्राइक करेगा. एडमिट नहीं करेगा तो स्ट्राइक करेगा. अभी हमारा वाइफ आ जाएगा.
2: चलो
1: 6 डॉक्टर आ जाएगा. हम घेराव करेगा. डॉक्टर इधर हम घेराव. हम जाएगा.
2: चलो बाहर चलो
1: चलो. इधर स्ट्राइक करेगा घेराव करेगा डॉक्टर.
0: हेलो ये इस डॉक्टर पालना वाला. ओ डॉक्टर गंजू कांग्रेचुलेशन फॉर व्हाट. ओ बाबा या बेबी. क्या दोनों बाबा यानी बेबी बेबी यानी बाबा. माय गॉड बाबा यानी बेबी बेबी यानी बाबा. जोसेफ पानी पानी लो. बेबी यानी बाबा दोनों. बाबा बाबा बाबा जोसेफ पानी लो.

रिजल्ट का चक्कर। हवा महल में अभी आपने हरीश दीक्षित की लिखी हुई ये नाटिका सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही है हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए वजीर फिल्म का गीत। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में तर्ज बनाई है शांतनु मोइत्रा ने, बोल विधु विनोद चोपड़ा के।

अंतरा मित्रा और श्रीराम को आप सुनिए 1920 लंदन फिल्म में। बोली के हैं प्रशांत इंगोले ने, संगीत कौशिक और आकाश का।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए हिमेश रेशमिया का गाया और उन्हीं का संगीत बद्ध किया सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, वो लिखे हैं समीर अंजान ने।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए सुनते हैं मनोज मंतसर का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, आवाज सुबिन नौटियाल की फिल्म का नाम काबिल।

ये थे जुबिन नौटियाल फिल्म काबिल में। अब सुनिए जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन को फिल्म बार बार देखो में, बोल आदित्य शर्मा के, संगीत जसलीन रॉयल का, और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में

0: आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास

0: आज कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह

0: कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव ने अप्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at the World Cup Stage 2 in Shanghai. And now the news in detail. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Shubhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
3: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
2: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong

लीजिए सुनिए लक्ष्मीपंत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: जो कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई।

और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ मिलकर उन्होंने बनाई फिल्म

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है।

0: लगी।
1: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
2: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे

0: की है
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान विष्णु
2: मंगलम। इकबाल मियां अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूं।
3: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए सलमान।
2: सिकंदर सिकंदर क्या मत की कुछ लगा मेरे यार जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई बहन किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
2: नहीं
4: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होता।
2: बस बस करो मेम साहब।
5: मेम साहब
2: क्या काम ना है तेरी मेम साहब जिससे तू
5: नहीं।
4: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
2: नहीं
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे कह लेने दो विशाल। सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया
2: सिकंदर। ये तुमने क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती। अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने

हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

प्रकाश मेहरा गीतकार भी थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गाने भी लिखे हैं, जैसे फिल्म लावारिस का ये गाना भी प्रकाश मेहरा की कलम का कमाल।

0: का।
1: 17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10 बज चुके हैं और आज है शुक्रवार, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं गिरिजा देवी का गायन, राग है ख्याल अभोगी कानरा।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है प्रोग्राम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और आज का ये प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरे यानी सुकृति के साथ। प्यार मोहब्बत दिल की बात करता ये प्रोग्राम रोज रात को 10 प्रस्तुत करते हैं हम आपके लिए। तो क्यों ना पहला नगमा पेश किया जाए आज के इस कार्यक्रम का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये पहला गीत।

बिल्कुल दोस्तों, प्यार उस मोड़ पे ले आता है जहाँ से लौटना मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और जो दिलों में बस जाते हैं फिर उन्हें भूलना भी नामुमकिन सा होता है। कहा भी है कि भूलने से फकत कहाँ भूलते हैं हमें मोहब्बत करने वाले, एक बार जो बस दिल में बस जाते हैं।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें अपनी दोस्त सुकृति के साथ। मदहोश आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी पलकें झुका

लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

आपने ट्यून किया है एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह तेरा पहला ख्याल, दोपहर तेरी यादों की धूप, शाम तेरी कमी का एहसास, रात तेरे ख्वाबों की दस्तक, जिंदगी तेरा एक इंतज़ार, इंतज़ार जो कभी ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हो मेरी ये तड़प, तड़प तेरे दीदार की, दीदार जो मुकम्मल ना हुआ और मुकम्मल ना हुआ मेरा ये इश्क, मेरा ये इश्क सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए।

0: श्रोताओं, अभी तक अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने

0: कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात के 11:05 हो चुके हैं और अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।